मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्स और FM 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 31वीं तिथि, तदनुसार रविवार दिनांक 21 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ होती है।

मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6 बजे हैं। अब हम हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें

0: 860,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए करें मातृभूमि की आराधना समूह स्वर में।

आप सुन रहे थे नीलम कटारिया की आवाज़ में भक्ति गीत। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

आप सुन रहे थे मुरली मनोहर स्वरूप की आवाज़ में ये भक्ति गीत। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए डीवी पुलस्कर की आवाज़ में भक्ति रचना।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। मीडियम वेव और एफएम पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 होने वाले हैं। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति में रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का सजीव प्रसारण। कार्यक्रम की समाप्ति तक।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष
2: कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: सभी
2: श्रोताओं को नमस्कार।
4: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी have arrived at the iconic Red Road, and the Honorable Prime Minister will be leading the nation today, and he will personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging, and we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
2: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
4: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर

0: आयुष।
1: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
2: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने यूट्यूब पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आर.एन. रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और साथ साथ ही पतलून पहनी है और जो भी योग अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं, योग साधक यहाँ पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में।

0: the occasion of the International Day of Yoga. And every yoga enthusiast, and we can see that the Honorable Minister for Municipal Affairs, Srimati Agnimitra Paul of the Government of West Bengal, is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honorable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 2,57,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi is walking towards the dais, where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
1: Rajpal Sri R. N. Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग-अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल

काल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm

stress-free life and keep and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने

0: परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या ना हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
2: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं।

0: क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
1: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था में आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
1: हम सब,
0: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
2: And the Honorable Prime Minister has just arrived and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है।
0: जी,
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेपेटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं।
0: जी,
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है।
0: जी, यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से।
0: जी, और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: Guruji, Manish Sharma ji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
4: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहाँ से शुरू होती है और ये बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
0: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है।

0: अध्यात्म में?
1: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है, है ना। जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं, अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
0: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
2: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
0: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है, अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
2: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चलाए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है
0: जी।
2: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं, वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
0: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
1: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
0: जी,
1: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे। तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटलिटी की तरफ

0: जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है।
1: जी yes, and... और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है, लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है। और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
2: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं। एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन।
1: जी
0: yes. And as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhams Yoganand set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa, through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone, is indeed a gift for humanity by India to the world.
1: जी, यहाँ पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है। हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहाँ पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
1: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
2: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है।
1: जी, और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है। और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नज़दीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में

0: सभी योग साधक.
1: And we can also see Neelam and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: जी बिल्कुल. और ये जो आसन है इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है. वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं. लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए. और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए. अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए. और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं.
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है. और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है. साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है.
0: जी. और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है. माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में. यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य. कौशिक जी.
1: यस एब्सोल्युटली. एंड एज वी मेंशन्ड अर्लियर आल्सो द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी, and now यहां about this asana, अभ्यास किया Neelam. जा रहा है शशक आसन का. खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है. और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है. और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए. उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं.
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन. शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं. उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन. ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है. साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है.

0: साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है. एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये.
1: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है. तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता
2: है. नाउ आई थिंक द एंथुसियास्ट ऑफ परफॉर्मिंग वक्रासन.
1: जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है. प्रतिमा जी
0: बिल्कुल सही है कि ये हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है. ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है. तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है. साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन.
1: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
0: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है.
1: जी, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
2: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन,
1: उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
2: परफेक्ट मैनर. एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स.
0: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है. और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं, और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ हैं, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है. तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं. साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये.
1: जी, और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं. अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है. हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है. तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चले. मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं. और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन. यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं. भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है. इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
0: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे. ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है. साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है. स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है. ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है. और

0: सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं।
1: जी गुरु मुनीश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रही हैं। आपका क्या विचार है, क्या योग को हमारे स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: जरूर जरूर, एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना,

0: पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं, और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं, बहुत ही सुंदर
1: जी।
0: बहुत ही
1: और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं, जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन, इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
2: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है
1: जी।
2: और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं, उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन
1: जी। सेतु बंधासन, और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान सी कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक, कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है, यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
2: पवन मुक्त आसन जो है, आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
1: जी।
2: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है
1: जी। गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
0: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध
1: जी।
0: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं, तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें, इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है। हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग, और ये

0: सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की ज़िंदगी जिया जाए, है ना। योग योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त के कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
1: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
2: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपालभाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोपनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपालभाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच, जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
3: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
2: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामीन युक्तिन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्व रोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है। लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्वरोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेद वायु, युक्तम युक्तम च पूरयेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं।
3: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
2: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात

0: सॉरी पित्त जो है हमारा उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
1: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है
0: जी। और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है। भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षणमुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
1: जी।
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज है, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी जी। भ्रमर जैसी आवाज हम
0: और बाहर कनेक्शन कट भी करना होता है ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है, तो हम अपने आप से जुड़ पाए।
1: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं जी।
2: नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, विच इज अ टाइम फॉर आवर सेल्फ असेसमेंट एंड बिकमिंग वन विद द यूनिवर्स। डॉक्टर प्रतिमा,
0: मेडिटेशन इज नॉट जस्ट मेडिटेशन, इट इज मेडिकेशन ऑफ बॉडी एज वेल एज माइंड। क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है
1: जी। और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
3: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है, और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी, इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है, और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें, मेरी खुद की लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था, और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा, और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है, और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है
1: जी। आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना,
4: शांति
1: मंत्र का पाठ किया जा रहा है।

0: हथेलियों को घर्षण कीजिए। कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों
1: पर, जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
0: और धीरे धीरे
1: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक मैग्नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है, तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नाउ मेकिंग हिज वे टुवर्ड्स द एग्जिट ऑफ द रेड रोड एंड एवरीवन हु वर प्रेजेंट हियर एंड हु वर लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yoga asanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: जी, जल थल नभ सभी योग में होंगे। हम जानते हैं कि भारत में तो सूर्योदय जब हो रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
2: योगा 365, that is what the honorable prime minister had mentioned, and we would also like to inform our listeners that as the honorable prime minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace, but also yoga. And this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munesh Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our ऑडियंस?
3: यस, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बन के 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें। एक समय चुने 10 मिनट या 15 मिनट, वो सिर्फ स्टैचू हो जाएं। जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं। और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर

0: वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनसपटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं। मैं एक दृष्टा हूं। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूंगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं तो ध्यान करें। इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है। जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हमें बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: Yes, and as Guru Munish Sinha ji mentioned, and as you also mentioned, Neelam ji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the River Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the

0: Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में कार्यालयों में संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं इन दिनों. माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं. 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए. और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 400,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं. हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं. और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है. तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है. स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडिंग लगे हैं. आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है. और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है. और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा. मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं. और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है. सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना. विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं. आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग. आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना. मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स. मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से, आप वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ, और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं. सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ. नमस्कार.
2: नमस्कार.
3: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे. विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में. कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ. ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया. 8 बजने को हैं.
2: मीडिया वेव पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है. सुबह के 8 बजने वाले हैं. लीजिए सुनिए समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से.

0: और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। यह आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में, बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्म कुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं।

0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
2: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है।

0: ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
2: धन्यवाद फरहत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम किस्सा कहानी। कहानी का शीर्षक है अनबूझ कहानी। संकलन और लेखन श्री राम प्यारे रसिक जी का है। संयोजक नागेंद्र दुबे हैं। प्रस्तुति शुभनाथ साहू की है। प्रतिभागी हैं मृदुल गुप्ता, शुभनाथ साहू और कमलेश सिंह।

0: लोक कथा श्रृंखला किस्सा कहनी की आज की इस कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं सरगुजिया कहानी अनबूझ कहनी। संकलन व लेखन राम प्यारे रसिक का है। संयोजक हैं नागेंद्र दुबे और प्रस्तुतकर्ता हैं शोभनाथ साहू।
1: प्रस्तुत अनबूझ कहनी में एक ऐसा चित्रण है जो आपको अचंभे में डालने के साथ ही आपके मस्तिष्क को सोचने के लिए विवश करता है। इस कहानी में एक पहलवान एक ऐसा कमीज सिलवाता है जिसके जेबों में 70 मन सत्तू और 80 मन गुड़ समा जाता है। एक बुढ़िया के कंधों पर 2 पहलवान लड़ते हैं। वो बुढ़िया कितनी ताकतवर होगी आदि इसी तरह की कई बातें आपके सामने प्रश्न छोड़ जाती है। यही इस कहानी में आज आप सुनेंगे।
0: तैहा जुकर बात हवे, अगम पहाड़ कर धरी में दुई गो गांव बसे रहीं। दोनों गांव में एक एक गो पहलवान रहत रहीं, जिनकर करतब कर गोएट चारों कति फैले रहीस। दोनों पहलवान अपन अपन गांव में छुट्टा साण हस घूमत रहें और ककरो ठन अर्जे कर रास्ता खोजत रहें। दोनों गांव में एगो गांव कर नाव रहे अखरा और दूसर गांव कर नाव रहे भखरा।
1: एक दिन कर दिने अखरा कर पहलवान हर अपन मने सोचिस,
2: अगर मैं भखरा कर पहलवान ला पटक देते तो मोर नाव सब कति बगैर जातीस।
1: यही सोच के अखरा कर पहलवान हर एगो कमीज सिलवाइस और वो में दोनों कति दुई गो जेबा बनवाइस। जब कमीज बहन गीस ता पहलवान सोचिस,
2: जब मैं लड़े बर भखरा गांव जाहूं ता मोला रास्ता में भूख तो जरूरे लागी, रास्ता बर मोला कुछ पनपियाव धैर लेक चाहिए।
1: एला सोच के ओहर एगो जेबा में 70 मन सतुआ और दूसर जेबा में 80 मन गुइर ला धर लीस। इतना तैयारी कर के अखरा कर पहलवान हर भखरा कर पहलवान ठन लड़े पर चलिस।
0: भखरा गांव नगदे दूरिया रहे। पहलवान रेंगत रेंगत जंगल झरिया नाकत मारत भखरा कर सिवायन ला जा लबरिस। रेंगत रेंगत उला हड़बड़ भूख लागे रहिस। पहलवान मने सोचत रहे कि अपन जेबा में धरल 70 मन सतुआ और 80 मन गुर ला साने बर इतना बड़े थरिया कहाँ पाहूं। पहलवान यही सोचत रहिस तले ओकर आँखी में एगो तालाब दिखिस। तालाब में पानी भरे रहे। पहलवान सोचिस कि थरिया खोजे ले बढ़िया हवे कि मैं अपन सतुआ और गुर ला यही तालाब में डाल सानो खाओ और अपन डहर धरो। ओहर अपन जेबा ले 70 मन सतुआ और 80 मन गुर ला तलाव में उझल दहिस और ओला साइन के जम्मो तलवा कर पानी समेत खाए के डकारे लागिस। अखरा कर पहलवान कर डकार सुइन के भखरा कर पहलवान उठन जाए धमकिस। भखरा कर पहलवान हर रीस कर मारे पूछिस,
1: ने जी तय कहाँ कर पहलवान हस, तय जम्मो तलाव कर पानी ला पी डारे, अब हमर गांव कर गरु बछरू कहाँ पानी पी तेला बता।
0: अखरा कर पहलवान हर भखरा के पहलवान कर गोइठ ला सुनीस तक कहीस,
2: ना भाई मोला भूख प्यास लागे रहीस तेकर ले मैं तालाब में सतुआ गुड़ साइन के खाए डारे, तहे कौन हवस एला तो बता। मैं तो अखरा कर पहलवान लागो आऊ मैं भखरा कर पहलवान ठन लड़े बर आए हूँ।
0: उकर गोइठ ला सुन

0: के भखराकर पहलवान हर कहिस,
1: मैं हर भखराकर पहलवान लागो तो ठन लड़े बर तैयार हो जी। बाकी हमर लड़ाई ला कौन देखी और कौन बताही कि हमन कर लड़ाई में कौन जीतीस और कौन हारिस।
0: अखरा कर पहलवान हर भखरा कर पहलवान कर गोइठ ला सुइन की कहिस,
2: तैं ठौके कहत हस गा, चलता कोई मइनसे के खोजी जेहर हमर लड़ाई ला देख के फैसला सुनाए।
0: दोनों पहलवान एगो फैसला करैया मइनसे ला खोजे लागिन। तेही घिन उमन देखिन कि एगो बुढ़िया लाठी चमकावत जात रहे। बुढ़िया ठन दोनों पहलवान बदत के जाए पहुंचिन और कहिन,
2: दाई हमन लड़े जात ही,
1: तही ठहर के हमर लड़ाई ला देख और हमर हार जीत कर फैसला कर दे।
0: बुढ़िया उमन कर गोट ला सुन के कहिस, दाऊ मैं अपन नाती ला खोजे जात हूँ, ओहर 100 भैंसा ला चराए बर गईस हवे और अजे ले नहीं फिरीस हवे। तुमन दोनों पहलवान मोर खांदे चढ़ जा और लड़त चला, जेहर मोर खांद ले गिर जाही ना ओहर हारल कहाही।
1: दोनों पहलवान बुढ़िया कर खांदे चढ़ के लड़े लागी और बुढ़िया दोनों पहलवान मल्ला अपन खांधे डोहे अपन नाती ला खोजे बर भटके लागिस।
0: बुढ़िया कर नाती अपन 100 भैंसा मल्ला चरात रहे। नाती हर दूरिया ले देखिस कि ओकर बरदाई आवत हवे और अपन संगे दुठन सिपाहियों मन ला लानत हवे। बरदाई अजे जरूर मोला पकड़वाए के मरवाही, तहा ओहर बुढ़िया कर डरे झट ले अपन पगड़ी ला खोल के 100 भैंसा मल्ला गठरी में बांध के खांधे लटकाइस और भागे लागिस। नातीला भागत देख के बुढ़िया दोनों खांदे लड़त पहलवान मला पटाइक के नाती कर पाचू लाठी धैर के बदके लागिस। इते नाती भागे उते बुढ़िया कुदाए।
1: नाती कर खांदे 100 बड़े बड़े भैंसा कर बांधल मोटरी रहे। नाती कर कुदाई में गठरी में बांधल भैंसो गलो अग बकाए के हाफे लागी। यही घेर एगो भैंसा कर जीभ गठरी कर बहिरे ही कैल गिस। भैंसा कर लाल लाल जीभ गठरी के बहिरे अलगट दिसत रहे।
0: भैंसा कर लाल लाल जीभ ला अगासे उड़त एगो रवना गिद्धा हर देख लेहिस। गिद्धा मन कर आखिना अड़बड़ तेज होते। अगासे उड़त गिद्धा मन भुइया में रेंगत नान नान मुस्टा घलो ला देख लेते। गिद्धा भैंसा कर लाल जीभ ला देखते झपट्टा मारे बर मर्राए लागिस और मौका पाए के झपट्टा मारिस। गिद्धा कर पंजा में भैंसा कर जीभ पकड़ाए गईस और गिद्धा गठरी में बांधल पूरा 100 भैंसा मन ला ले के अगा से उड़ गईस।
1: इते गिद्धा भैंसा कर जीभ संगे 100 भैंसा कर गठरी लेके अगा से उड़े लागिस और उते नाती हर गुहार पार के रोए लागिस। गिद्धा गठरी ला अपन पंजा में दबाए के उड़त उड़त एगोट राजा कर महल उपरे मंडराए लागिस। वही महल कर छत उपरे वो राजा कर रानी अपन पलंग में उतान सुइत के अगास डहर आंखी ला निटोरे रहे। यही घरी गिद्धा कर पंजा ले सबो भैंसा कर गठरी हर छुइट के रानी कर आंखी में आई गिरिस। जब रानी कर आंखी में 100 भैंसा कर गठरी हर आई गिरिस त रानी हर अपन नौकरानी ला गोहराए के कहिस,
0: चटिक देख तो गे मोर आंखी में कहीं कचरा हर परगिस का।
1: नौकरानी हर ओकर आंखी ले गठरी ला अपन अंगुरी में निकाल के देखिस ता ओमे 100 भैंसा रात रहे। नौकरानी हर कहिस,
0: रानी ए कचरा में तो 100 गो भैंसा हवे, एला का करूं।
1: रानी हर कहिस,
0: ए दे ते सब भैंसा मन लाना गहूं कर कोठी में छोड़ दे, मैं दूसर दिन भैंसा मन ला देखूं।
1: नौकरानी हर सब भैंसा मन ला गहूं कर कोठरी में छोड़ दहिस।
0: दूसर दिन रानी हर सब भैंसा मल्ला लाने बर हुकुम देहिस। नौकरानी सब भैंसा मल्ला रानी कर आगू हैंक लानिस और गिनती करे लागिस। गिनती में एगो भैंसा कम पैर गईस। 100 ठन भैंसा में 99 ठन भैंसा भेटाई। एगो भैंसा कर पत्ता नी चले। दूसरो जन मन गिनीन तबो एगो भैंसा कम रहे। रानी हर कहिस, एगो भैंसा ना गहूं कर कोठी में जरूरे लुकाइस होही। तुमन जम्मो गहूं ला पिसवायता, पिसात घनी भैंसा हर जरूर भेटाय जाही।
1: रानी कर हुकुम पाए के नौकर मन जम्मो कोठी कर गहूं मल्ला पिस डारिन। सब गहूं पिसाएगीस तब हुए गोट भैंसा कर पति नी चले। तर रानी हर हुकुम देहिस,
0: तुमन पिसल जम्मो पिसान कर एक ठन रोटी बनावा और ओला तावा में डाल के सेका।
1: रानी कर हुकुम पाते जम्मो सुवारी मन सब गहूं कर आटा ला साइन के

0: एगो रोटी बनाई और वाला बेल के तावा में डायर के चूल्हा में आगी धतकाए दी। जब चूल्हा कर आगी धतकीस ना और तावा कर संगे रोटी गरमाइस ते घरी रोटी ले हिकैल के बड़का भैंसा हड़बड़ात भागे लगीस। नौकर मन भैंसा ला पकड़ लेन और 100 भैंसा मन कर गिनती पूरा करी।
1: ते घरी ले आज तक कोई ना बताए सकीस हवे कि एमे कौन सबले बड़े रहीस। कोनो कथे अखरा कर पहलवान जेहर जम्मो तालाब कर पानी पी देहीस। कोनो बुढ़िया ला कथे जेकर खांद रहीस कि मैदान जेमे दोनों पहलवान लड़त रही। कोनो नाती लैका ला बड़े कथे जेहर 100 भैंसा ला गठियाए के भागत रहीस। त कोनो गिद्धा ला कथे जेहर 100 भैंसा ला आगासे ले उड़ीस। कोनो रानी कर आंखी ला बड़े कथे जेमे 100 भैंसा मन कचरास लागिन। कोनो सोचथे कि वो रोटी हर कतना बड़े रहीस जेमे भैंसा लुकाए रहीस।
2: त कहनी सुनवैया मन अपन मने गुना और तुहू मन बतावा कि एमे कौन हर बड़े रहीस।
1: लोक कथा श्रृंखला किस्सा कहनी की आज की इस कड़ी में आपने सुनी सरगुजिया कहानी अनबुझ कहनी। वाचन स्वर शोभनाथ साहू, कमलेश सिंह और मृदुल गुप्त का था। संयोजक थे नागेंद्र दुबे और प्रस्तुति थी शोभनाथ साहू की। लोक कथा श्रृंखला किस्सा कहनी की अगली कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे कहानी छेड़छेड़ता। आज यहीं तक, नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किस्सा कहने। कहानी का शीर्षक था अनबुझ कहानी। संकलन और लेखन श्री राम प्यारे रसिक जी का था। संयोजक नागेंद्र दुबे थे। प्रस्तुति शुभनाथ साहू की थी। प्रतिभागी थे मृदुल गुप्ता, शुभनाथ साहू और कमलेश सिंह। मीडिया वेब पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह 9 बजे सुनना ना भूलिए बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। 12:30 पर हम लेकर आएंगे आपके लिए कार्यक्रम आप मन के गीत, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। आज कार्यक्रम में होगा आपके लिए खास शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, जिसमें आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग और विश्व संगीत दिवस। साथ ही होगा कार्यक्रम में फोन इन कार्यक्रम बात करें गीत सुने घर आंगन मेल। 1:40 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम ईमेल की गूंज। गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुनेंगे दिन के 2:30 पर। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। कार्यक्रम में सामान्य चर्चा के विषय होंगे पर्यावरण संरक्षण हम सबका दायित्व, स्वच्छता ही स्वास्थ्य है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सुनेंगे कुछ लोकगीत, जानेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी व मौसम आधारित कृषि परामर्श। मीडिया वेब पर ही आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए सामुदायिक गीत प्रशिक्षण पाठ। गीतकार है GDR गौड़ा।
1: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
2: हाँ, आ गए हैं।
1: आप किस स्कूल में पढ़ते?

0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग।
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ, सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
2: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्की गलू। क्या है?
2: कडल हक्की गलू।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप
1: हाँ।
0: सब लिख लीजिए।
1: हाँ।
0: कडल करेय खगकुला,
2: कडल करेय खगकुला,
0: येनी
2: तो मुगीला, उद्द अगला, जी की दनी तू
0: बांदड़ा,
2: बांदड़ा।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टैंजा है। हाँ?
1: हाँ।
0: आगे का स्टैंजा है, बान लोक नगुव नाका,
2: बान लोक नगुव नाका,
0: हारो हक्की पालीगे,
2: हारो हक्की पालीगे,
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी,
2: रेक्के बीसी धैर्य सूसी,
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे,
2: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टैंजा, दूर दूर हारी हारी,
2: दूर दूर हारी हारी,
0: व्योम कानुआ बगे,
2: व्योम कानुआ बगे, हसीव मरेसी, वांछे मेरेसी,
0: दिगंत सेरो लघु बगे,
2: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा,
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो,
2: याव नाडो यंथ काडो,
0: हारो आसे हक्कीगे,
2: हारो आसे हक्कीगे,
0: मुक्त गगन नूरु काल,
2: मुक्त गगन नूरु काल,
0: ईजो शक्ति रेक्केगे,
2: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ।
3: हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम होना है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ?
0: इसी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे। हाँ?
1: हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं। पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजे के दिखाते हैं ना?
1: धा दिन्ना धा तीन्ना धा दिन्ना धा तीन्ना धा दिन्ना धा तीन्ना धा दिन्ना धा तीन्ना।

अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहली अंतर था ना बान लोक नगुना का उसी के जैसी है। अच्छा तो गाते हैं।

आप सुन रहे थे सामुदायिक गीत प्रशिक्षण पाठ। गीतकार थे GDR गौड़ा। मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। प्रस्तुत है आप सभी के लिए बात और गीतों का कार्यक्रम गुंजन, जिसमें हाजिर हैं हम और आप, नए विचार, नई उम्मीद व नई सोच के साथ, एक नए एहसास के साथ। आप सभी श्रोताओं को हिमलता का प्रेम भरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमस्कार श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे ढेर सारे विषयों पर, जिसमें खास है आपके लिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, सेल्फी दिवस और फादर्स डे पर ढेर सारी बातें कि कैसे, कब और क्यों ये दिन हमारे लिए खास होता है, या क्यों ये मनाए जाते हैं, या इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। ढेर सारी बातों से रूबरू होंगे, आइए सुनते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ। उम्मीद है प्रतिदिन नित नियमित आप अपने दिनों में, दिनचर्या में योग को शामिल करते ही होंगे। योग केवल कहने वाली बात नहीं है, ये करने वाली बात है। योग एक

ऐसा अनमोल विरासत है जिसने पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। प्रिय श्रोताओं, हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग केवल कुछ शारीरिक क्रियाओं का ही नाम नहीं, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने की एक अद्भुत कला है। योग हमें स्वस्थ, शांत और सकारात्मक बनाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और अनियमित दिनचर्या आम बात हो गई है। ऐसे में योग एक वरदान की तरह हमारे जीवन में आता है। प्रतिदिन कुछ मिनट योग करने से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि हमारा मन भी शांत और एकाग्र रहता है। योग हमें अनुशासन, संयम और संतुलन का पाठ तो सिखाता ही है, साथ ही एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ें ये भी सिखाता है। चाहे बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योग को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम भी एक वादा अपने से करते हैं कि प्रतिदिन कुछ समय के लिए, शुरुआत आप 10 मिनट से भी कर सकते हैं, अवश्य निकालेंगे और अपने परिवार तथा समाज को योग के प्रति भी जागरूक करेंगे। क्योंकि योग रहना और योग करना और निरोगी रहना, ये सबसे बड़ी हमारे जीवन की पूंजी है। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार उनके साथियों की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा ये गीत। संगीत है शिवहरी का, फिल्म है सिलसिला।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। इस योग को पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में परिचित कराने का योगदान रहा है हमारे भारत का। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति और परंपरा का अनमोल उपहार है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग खोजा। महर्षि पतंजलि ने योग के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया और योग को एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति का रूप दिया। भारत ने न केवल योग को जन्म दिया, बल्कि उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने का भी महत्वपूर्ण काम किया है। आज दुनिया के लगभग हर देश में लोग योग अपनाकर स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2014 में भारत के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। यह भारत के लिए गर्व की बात है कि आज पूरा विश्व भारतीय योग परंपरा को सम्मान और अपनापन दे रहा है। योग हमें सिखाता है सच्ची खुशी और स्वास्थ्य बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ, मन शांत और जीवन सकारात्मक बनता है, क्योंकि योग भारत की पहचान है, स्वस्थ और सुखी जीवन का वरदान है। योग करें, निरोग रहें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

योग योगासनों का संगम है, लेकिन योग में सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान। ध्यान अर्थात मेडिटेशन हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना। ध्यान आंखें बंद करके बैठने का ही केवल नाम नहीं, बल्कि यह अपने मन को एकाग्र करने और स्वयं से जुड़ने की प्रक्रिया है। नियमित ध्यान करने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है,

और सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। शोध बताते हैं कि प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति अधिक सकारात्मक महसूस करता है। विद्यार्थियों के लिए ध्यान विशेष रूप से लाभदायक है क्योंकि इससे एकाग्रता और स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी होती है। इतना ही नहीं, ध्यान हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करके नींद की गुणवत्ता सुधारने और थकान को कम करने में सहायक होता है। तो श्रोताओं, आइए आज हम प्रण करते हैं कि अपने व्यस्त जीवन से प्रतिदिन कुछ मिनट निकालकर ध्यान अवश्य करेंगे, क्योंकि शांत मन ही स्वस्थ और सफल जीवन की कुंजी है। ध्यान अपनाएं, मन को शांत बनाएं और जीवन में सकारात्मकता लाएं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत है आर डी बर्मन का, फिल्म है जमाने को दिखाना है।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

आज का विशेष कार्यक्रम समर्पित है उस व्यक्तित्व को जो हमारे जीवन की नींव है, हमारी ताकत है और हमारे हर सपने को उड़ान देने वाला पहला इंसान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फादर्स डे की। दोस्तों, पिता केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि एक एहसास भी है। वे उस विशाल वृक्ष की तरह होते हैं जो स्वयं धूप में खड़े रहकर अपने बच्चों को छांव प्रदान करते हैं। वे अक्सर अपने प्यार को शब्दों में व्यक्त नहीं करते, लेकिन उनका हर त्याग, हर संघर्ष और हर प्यास अपने बच्चों के लिए ही होता है। जब हम छोटे होते हैं तो पिता हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं। जीवन की राह में गिरने पर वे हमें संभालते हैं, आगे बढ़ने का हौसला देते हैं और हर मुश्किल में हमारी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। आज की व्यस्त जिंदगी में हम अक्सर अपने माता पिता, विशेषकर पिता के प्रति अपने प्यार और सम्मान को व्यक्त करना भूल जाते हैं। फादर्स डे हमें अवसर देता है कि हम अपने पिता को धन्यवाद कहें, उनके साथ समय बिताएं और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे हमारे लिए कितने अनमोल हैं। इस फादर्स डे पर हम अपने पिता को सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनके त्याग के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। ये केवल एक दिन की बात नहीं है, ये उस अंतिम सांस तक है जो हमें जीवन में उनके द्वारा हमें मिला है। अंत में पिता को समर्पित कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। पिता वह अनमोल रिश्ता है जो हर परिस्थिति में साथ निभाता है। हाँ, पिता वह अनमोल रिश्ता है जो हर परिस्थिति में साथ निभाता है, खुद कठिनाइयाँ सहकर भी अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाता है। आइए सुनते हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, बेबी अपर्णा की आवाज में, समीर का लिखा गीत, संगीत है हिमेश रेशमिया का, फिल्म है मैं ऐसा ही हूँ।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: इस अंतराल के पश्चात आइए पुनः बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम गुंजन की ओर, जिसमें हम बात कर रहे हैं फादर्स डे पर। श्रोताओं, पिता व छाया है जो हर दुख में साथ निभाते हैं, खुद धूप में जलते रहते बच्चों को छांव दिलाते हैं। पिता व छाया है, पिता व शक्ति है जो हिम्मत बनकर साथ खड़े रहते हैं, बिना कहे ही हर मुश्किल में हमारी राह आसान करते हैं। उनके त्याग का मोल नहीं, उनके प्रेम का कोई तोल नहीं, हर खुशियों की नींव है पिता, उनसे बढ़कर कोई अनमोल नहीं।

आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, संगीत था आर.डी. बर्मन का, फिल्म थी अगले लग जा। श्रोताओं, पिता है जीवन की पहचान, पिता से ही मिलता सम्मान, उनके आशीष से बढ़ते कदम, उनसे ही रोशन होता जहां, खुद की खुशियां भूलकर हमारे सपनों को सजाते हैं, ऐसे प्यारे पिता को हम दिल से शीश झुकाते हैं।

0: रेखा जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
1: अरे पर दीदी मुझे तो फोन पर बात करनी थी, क्या आज फोन नहीं लगेगा?
2: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इन का प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
0: पर आरती रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
2: रेडियो एकदम सही सेट है, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अच्छा और फोन नंबर क्या है?
2: नंबर है 231-917 और 231-918, कोड लगाओ 0।

0: 9007774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना, gharanganair@gmail.com।
1: समझ गए, मंगलवार को मेल और रविवार को फोन।
0: आकाशवाणी अंबिकापुर घर आंगन, मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन बात करें गीत सुने। सुनिए मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: घर आंगन, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम गुंजन। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस फादर्स डे के साथ साथ मना रहे हैं विश्व संगीत दिवस। आज का यह विशेष कार्यक्रम समर्पित है उस कला को जो दिलों को जोड़ती है, भावनाओं को अभिव्यक्ति देती है और जीवन को मधुर बना देती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं विश्व संगीत दिवस की। प्रिय श्रोताओं, हर वर्ष 21 जून को पूरे विश्व में विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य संगीत को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक लोगों को संगीत से जोड़ना है। संगीत एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जिसे समझने के लिए किसी शब्द या भाषा की आवश्यकता नहीं होती। संगीत हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। खुशी हो या गम, उत्सव हो या कोई विशेष अवसर, संगीत हर भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाता है। कभी मधुर धुने हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं तो कभी कोई गीत हमें पुरानी यादों से जोड़ देता है। संगीत केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का भी स्रोत है। कई शोधों में यह पाया गया है कि संगीत तनाव को कम करने, मन को शांत रखने और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होते हैं। भारत की सांगीतिक परंपरा विश्व भर में अपनी समृद्धि और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और फिल्मी संगीत ने पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का अनमोल हिस्सा, क्योंकि सुरों की दुनिया है निराली, हर दिल की है यह रखवाली। संगीत से जीवन महकी, खुशियों से हर राह चमके। आइए सुनते हैं मुकेश लता मंगेशकर की आवाज़ में संतोष आनंद का लिखा गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म है शोर।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी अंबिकापुर से। संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07742306000।

0: समुद्रों, नदियों, जलमार्गों की सुरक्षित और वैज्ञानिक जानकारी से जुड़ा है आज का अगला विषय। जी हाँ, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। प्रिय श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष 21 जून को आज हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को हाइड्रोग्राफी के महत्व के प्रति जागरूक करना और समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास में इसकी भूमिका को जागर करना है। आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोग्राफी क्या है। अगर सरल शब्दों में समुद्र, नदियों, झीलों और अन्य जल क्षेत्रों की गहराई, तल, ज्वार भाटा तथा जल मार्गों का वैज्ञानिक अध्ययन ही हाइड्रोग्राफी कहलाता है। श्रोताओं, उम्मीद है आपको आज के बात और गीतों का कार्यक्रम गुंजन पसंद आया होगा। आप अपने प्रतिक्रिया और सुझाव हमें जरूर लिख भेजें। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स संख्या 27, हमारा पिन कोड है 497001। दीजिए मुझे बात और गीतों के कार्यक्रम गुंजन से विदा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए
1: रायपुर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंबिकापुर में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। और एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर देशभर में आयोजित कार्यक्रमों में लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। इस वर्ष का विषय स्वस्थ आयु के लिए योग रखा गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित योग कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों ने योग किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्यप्रदेश के जबलपुर में योग कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के कुछ हिस्सों में 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है।

और योग के कारण यह अब यह सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। उन्होंने ये कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि भावना की अभिव्यक्ति और यह किसी आयु वर्ग तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में भी सामूहिक योगाभ्यास के अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। अंबिकापुर स्थित पीजी कॉलेज ग्राउंड में राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत देश भर के किसानों के खातों में राशि अंतरित की गई। छत्तीसगढ़ के 24 लाख से अधिक किसान परिवारों को 490 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के कुनकुरी में वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए और किसानों के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि के बिना विकसित भारत की कल्पना पूरी नहीं हो सकती। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों को खेती के लिए जरूरी आर्थिक सहयोग उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आने वाले किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज भी किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। लोकभवन रायपुर में कल एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल गोवा और तेलंगाना राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल रमेश डेका ने कहा कि विभिन्न राज्यों की भाषा कला और संस्कृति से जुड़ाव देश की एकता और अखंडता को मजबूत करता है। कार्यक्रम में तीनों राज्यों की संस्कृति परंपराओं और विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। कांग्रेस के इस शिविर में प्रदेशभर के जिला अध्यक्षों और संगठन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जशपुर वनमंडल ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान बनाया है। वनमंडल ने एक दिन में 2 लाख से अधिक सीड बॉल के प्रसार और रोपण कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में वनमंडल को इसका प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बीज गोला बनाबो जशपुर के जंगल्ला बढ़ाबो अभियान में ग्रामीणों विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने भागीदारी निभाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंबिकापुर में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। आइए आपको अवगत करा दें मौसम के हाल से। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 5.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। आप सुन रहे थे मौसम का हाल, ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आइए एक नज़र डालें हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूप रेखा पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से नाटकों का अखिल भारतीय।

कार्यक्रम। दिन के 12:30 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम आप मन के गीत आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नए तराने, कार्यक्रम आपकी पसंद का। समय होगा 11:05 पर। मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सब रंग आप सुन सकेंगे दिन के 12:00। खेती की बात का प्रसारण किया जाएगा दिन के 1:05 पर। जानकारी का विषय होगा पशुओं में न्यूमोनिया रोग। शहरी महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन दिन के 1:10 पर। कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय योग और विश्व संगीत दिवस। साथ ही सुनेंगे आप बात करें गीत सुने घर आंगन मेल कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय होगा दिन के 1:40 पर। गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ शाम 5:00 से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी शाम 5:30 पर युवा सोच और युवा पसंद के साथ। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधुली में आप सुनेंगे सरगुजिया लोकगीत लखनदास और उनके साथियों की आवाज़ में बड़खा साजन गीत। कार्यक्रम के इसी क्रम में सरगुजिया लोकगीत आप सुनेंगे केंदाराम और साथियों की आवाज़ में खेमठा गीत शाम 6:20 पर। चितपट संगीत की प्रस्तुति होगी शाम 6:30 पर। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। कार्यक्रम में सामान्य चर्चा के विषय होंगे पर्यावरण संरक्षण हम सबका दायित्व स्वच्छता से ही स्वास्थ्य है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष। साथ ही सुनेंगे किसान समाचार कृषि संबंधी सामयिक खबरें सुनेंगे कुछ लोकगीत और सुनेंगे ओ भी कार्यक्रम हमर किसान जानेंगे मंडी भाव मौसम की जानकारी और मौसम आधारित कृषि परामर्श। रात्रि 8:00 हम लेकर आएंगे इंस्टा फरमाइश सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। चित्रपट संगीत की प्रस्तुति होगी रात्रि 10:00। ये थी श्रोताओं हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर इस वक्त 10:04 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नए तराने।

आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में सैयद कादरी का लिखा गीत, संगीत था मिथुन का, फिल्म थी हृदय फर्स्ट केस। लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में ही मिथुन का लिखा गीत, संगीत है मिथुन का, फिल्म है हेट स्टोरी 2।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे साझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम

0: हम आयल किसान वाणी तेला सुन के
1: हो
0: एदे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही ये तो महू तो सुनू भाई एदे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाणी ला रोज 7:30 ले 8 कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि एदे FM में भी 100.2 मेगा हर्ट्ज में भी एलाहेदे सुन सकते हैं।
1: हाँ, अभी तो शुरू है कि साहेब।
0: हाँ, तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
2: किसान वाणी।

0: आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में रश्मि विराग का लिखा गीत, संगीत था जीत गांगुली लिखा, फिल्म थी हमारी अधूरी कहानी। लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में जुनैद वासी का लिखा गीत, संगीत है चिरंतन भट्ट का, फिल्म है 1920 विल रिटर्न्स।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई, यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
1: अरे वाह, 07774 230, 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश।

आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8 बजे से 8:45 तक।

और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

आप सुन रहे थे नेहा कक्कड़ विशाल मिश्रा की आवाज में राजशेखर का लिखा गीत, संगीत था विशाल मिश्रा का, फिल्म थी जबरिया जोड़ी। लीजिए सुनिए मीत ब्रदर्स जुबिन नौटियाल और धावनी भांसुली की आवाजों में मरजामा फिल्म का ये गीत, संगीत है मीत ब्रदर्स का, गीत लिखा है कुमार ने।

आप सुन रहे थे पलक मुच्छल की आवाज़ में श्वेता बोथरा का लिखा गीत, संगीत था पुनीत दीक्षित का, फिल्म थी 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में सिद्धार्थ गरिमा का लिखा गीत, संगीत है श्रेया पुराणिक का, फिल्म है एनिमल।

0: अरिजीत सिंह के गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम नैतराने अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पोत रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं।
2: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस दुनागिरी, अग्रय और संशोधक का नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री क्षमता के विकास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पड़ाव साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये तीनों पोत अब भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योग

0: अभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज हो रही है। ये परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इसराइली हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। श्रीलंका के दांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आप सभी को विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस की ढेर सारी शुभेच्छाएं। श्रोताओं, संगीत हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जो हमें जोड़ती है। हम अपने जज्बात संगीत के माध्यम से बड़ी ही आसानी से बयां कर पाते हैं। जीवन में खुश और व्यस्त रहने के लिए संगीत सबसे अच्छा तरीका है। संगीत भी योग की तरह है जो हमें खुशी और सुकून देता है। तो चलिए आगाज करते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और शामिल करते हैं आपको और आपकी पसंद के साथ। आपके भेजे हुए ढेर सारे खत हैं मेरे पास। तो चलिए इस पहले गीत को सुनवाने के लिए हमारे श्रोता साथी हैं जो इस गीत से जुड़ रहे हैं। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी मनन तानिया, शिवाजी चौक राजीम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, ग्राम पहरा अहिरवारा जिला दुर्ग से पोषण मंचूर, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया मंचूर। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म संगीत का गीत

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और कार्यक्रम आपकी पसंद में ये गीत हमने लिया है फिल्म कुर्बान से, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाजों में। शब्द रचना समीर की है और संगीत आनंद मिलिंद का है। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रहे महराज जहां, हरदेवलाल पारावार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव, गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र, बबीता सुरेंद्र, पूजा विकी रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, कुमारी देविका चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, डोंगरगांव से डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय बेबी अनिष्का राधिका गजभिये, और बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन, यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से, विनोद खड़से, ऊपरकोट बुलंदशहर से हैं आप सभी श्रोता साथी, मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान, अबान अब्बासी, और जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म कुर्बान का ये गीत।

इस गीत को सुनना चाहते थे दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास पानीपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, माउली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा, ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजय, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और जामरून से दुर्गादास जोशी, गंगाधर, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, साध्वी और परभणी हुन, गणेश हरगांवकर। इसी गीत को सुनना चाहते थे पुणे से पंकज वाडोदे, प्रियंका आर्या, जरूड वरूड से बाबा साहब वाडोदे, मीनाक्षी चरपे और चंद्र प्रभा वाडोदे। कार्यक्रम आपकी पसंद में, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में फिल्म हीरो का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दी है और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता साथी। जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, नास प्रवीण। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख। इस गीत को सुनना चाहते थे देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता नेभवानी, आकाश नेभवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा सीता सागर, आयुषी हनी और परिवार के सभी सदस्य। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन, सोनू वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्य। तो आइए अब सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म हीरो का ये गीत।

कार्यक्रम आपकी पसंद में लीजिए अब पेश है फिल्म हम दिल दे चुके सनम का गीत डोमिनिक सरजो और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। गीतकार है महबूब और संगीत इस्माइल दरबार का है। और इस गीत को सुनने के लिए हमें खत भेजा है धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छनूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव। मछली गोदाम कैदुमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, प्रियंका, पूजा, लेलू।

इस गीत को सुनना चाहते थे रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और पूरा डागला परिवार। सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अनुराधा पौडवाल और मनोहर उदास की आवाज़ों में फिल्म सड़क का गीत। शब्द रचना समीर की है और धुन नदीम श्रवण ने बनाई है और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता साथी। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। और मेहरनगर उमड़खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौहाणकर, राही सरिता गौहाणकर, प्रिंस एकांश गौहाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गौहाणकर, श्वेता सुमित गौहाणकर, ध्वनि गौहाणकर परी। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गौहाणकर, प्रीता गौहाणकर। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा सालिया, शोएब खान।

मुस्तफा खान, राव भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले, और बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम आपकी पसंद में लीजिए अब सुनिए फिल्म दिल मांगे मोर का गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं समीर और संगीत हिमेश रेशमिया का है और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता साथी ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर से मानिकराम प्रजापति जानकी प्रजापति घनश्याम हरिशंकर प्रशांत रत्नेश प्रजापति ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता पांडेराम राजवाड़े ग्राम लक्ष्मीपुर सूरजपुर से तीजन सिंह मरावी देवालाल और इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम दवनसरा पोस्ट दौना सूरजपुर से कपिल राज देवांगन दखल कल्लू भाई झांगुड़लाल सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से

आप हैं अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु टेकचंद यादव, मनोज अनुष्का यादव। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म दिल मांगे मोर का गीत।

अब पेश है कार्यक्रम का आखिरी गीत। इस गीत को सुनना चाहते हैं यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, चार मीनार चौक गणई पंडरिया से दरियानामा अनिता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी, गांधीबाग नागपुर से अशोक कुमार सावलानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल, भूमिका सुशीला दादी, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश और श्रृंगी ऋषि, महानदी से हवा पर्वत से ग्राम खेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मथु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन, बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढूमने, वैष्णवी ढूमने, चंचल, अर्जुन गवनेकर, धीरज सव्या सूरे, नयापारा भिरे से बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी, ईशराज, चंद्रकांत, प्राची और ट्यूशी सूर्यवंशी, भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईसान हुसैन, मरियम और बुशरा। इसी गीत को सुनना चाहते थे छत्तीसगढ़ भाटापारा तंद्रेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ताड़नी, सूरज सुजला, ज्योति रियांश ठाकुर और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जयदेव वीरक, मीका वीरक। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म सागर का गीत आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में।

अभी आप सुन रहे हैं आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में फिल्म सागर का गीत। इस गीत के गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत आर डी बर्मन का है।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का फरमाइश
1: प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा।

और अब पेश आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। और एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर देशभर में आयोजित योग कार्यक्रमों में लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। इस वर्ष का विषय स्वस्थ आयु के लिए योग रखा गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित योग कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों ने योग किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्यप्रदेश के जबलपुर में योग कार्यक्रम में शामिल हुईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के कुछ हिस्सों में 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग के कारण यह अब सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि भावना की अभिव्यक्ति है और यह किसी आयु वर्ग तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में भी सामूहिक योग अभ्यास के अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्यपाल रमेश डेका आज रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित योग शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज पूरा छत्तीसगढ़ सामूहिक योग अभ्यास के माध्यम से स्वास्थ्य संतुलन और सकारात्मक के संदेश को जन जन तक पहुँचा रहा है। वहीं अंबिकापुर स्थित पीजी कॉलेज ग्राउंड में राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योगाभ्यास कर प्रदेशवासियों को नियमित रूप से योग अपनाकर स्वस्थ संतुलित और निरोग जीवन जीने का संदेश दिया। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा जगदलपुर के शासकीय काकतीय स्नातक

0: उत्तर महाविद्यालय प्रांगण में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एनसीसी, एनएसएस, पतंजलि योग समिति और युवाओं सहित लगभग 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आने वाले किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज भी किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे अभनपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस के नवनियुक्त 41 जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण देंगे। इस अवसर पर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट भी उपस्थित रहेंगे। 10 दिनों का कांग्रेस का यह प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो रहा है। कांग्रेस के शिविर में प्रदेश भर के पार्टी के जिलाध्यक्षों और संगठन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका उत्तर छत्तीसगढ़ से तेलंगाना तक विस्तारित है, जिसके असर से राज्य के उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री अधिक है, जिसके कारण रायपुर और दुर्ग संभाग में लू चलने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार 23 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ सकता है। कोरिया जिले के सोनत थाना क्षेत्र के ग्राम नौगई में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने सभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 16 जून की रात आपसी रंजिश के चलते चार पहिया वाहन में आग लगाने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद फरार 5 मुख्य आरोपियों में एमसीबी और कोरिया पुलिस की संयुक्त टीम ने कल दबिश देकर पकड़ा। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। अब पेश है कार्यक्रम सबरंग।

0: अभी आप जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाज़ों में ये गीत सुन रहे थे। शब्द रचना रश्मि विराग की थी। आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
0: कार्यक्रम सबरंग में लीजिए सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में ये गजल।

0: राम राम हो विष्णु भैया।
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगत दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ
1: तहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि यदि सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही।
1: हे
0: तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते हैं।
1: हाँ अभी तो शुरू है कि साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए यासिर देसाई और नेहा कक्कड़ की आवाज़ों में ये गीत। गीतकार हैं राणा और संगीत रजत नागपाल का है।

कार्यक्रम सबरंग में लीजिए आप सुनिए तलत अजीज की आवाज में ये गजल शायर हैं सूरज सानिम। संगीत ललित सेन का है।

मिश्रित गीत संगीत के कार्यक्रम सबरंग के आखिर में लीजिए सुनिए अंकित तिवारी की आवाज़ में ये गीत। गीतकार हैं कुणाल वर्मा और संगीत अनुराग सैकिया का है।

आप मन के गीत सुनैया जम्मो साथी मन ला, आप मन के रेडियो दोस्त अमन पांडे के जय जोहार। त संगवारी हो, कार्यक्रम के शुरुआत करबो मदन मेहर और उखर साथी मन के गाय ये गीत संग, जिन ला सुने बर हमन ला पाती पठोए हैं हमर ये श्रोता संगी मन। भाटापारा ले श्याम रतन मुंदड़ा, रचनाकार मुंदड़ा। पलारी ले प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा। सिमगा ले दादू सेन, दीपक सेन, देवेंद्र, आशीष सेन। शीतलानगर दुर्ग ले शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर। दुर्ग ले अर्चना, काजल, अभिनव, बिट्टू और मिनी। भाटापारा ले अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद। फरसगांव, कोंडागांव, बस्तर ले हरीश साहू, पायल साहू, मेघा साहू, नवीन साहू, ऋषु साहू। भाटापारा ले सोहन जोशी, सावन नायक, रोहित साहू और वीरेंद्र वर्मा। भाटापारा ले मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार झेरिया, चिंटू झेरिया और युग कुमार झेरिया। कमरौत महासमुंद ले पंकज कुमार पटेल, किशनलाल पटेल, भुवनेश्वर चमनलाल और गरीबाराम पटेल। भाटापारा ले प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू। बेमेतरा ले संतोष कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र, व्रजकांत सारथी। दरचूरा ले ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। बेमेतरा ले पूर्णिमा सारथी, पूजा, आरती, भाव्या और सुषमा सारथी। नवागढ़ कटई ले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। यही गीत ला सुने पर हमन ला ईमेल भेजे हैं हमर ये श्रोता संगी मन। भाटापारा ले हिमकेश्वर, करण, राहुल और चंपा साहू। कोका भिलाई ले उत्तम सिंह जंगहेल, मोरस जंगहेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदिनी जंगहेल। धमधा सुखरी कला ले अमित जंगहेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगहेल। कोरबा ले गुंजन बरेठ, संतोष कुमार बरेठ, शर्मिला, लता और यशराज बरेठ। बिलासपुर ले बंसिका सिंह पवार, वंश, विपाशा और नरेश सिंह पवार। तावा संगवारी हो, सुनन आप मन के पसंद के ये गीत।

0: सुमन ठाकुर, ज्योति और रियांश ठाकुर, भाटापारा दतरेंगीले, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, महादेवघाट अमलेश्वर ले मिथिलेश ठाकुर, तारिणी सूरज और सुजला ठाकुर, भाटापारा ले एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित कुमार, अमिन कुमार, अमृता, पार्वती, ईश्वरी और लक्ष्मी यादव, रुआ बांधा, सनिचरी बाजार, भिलाई ले सुशील जैन, कल्पना जैन, सौरभ, सिया, शुभम और सौर्य जैन, कोटा रायपुर ले योगिता वर्मा, सूची वर्मा, खुशी वर्मा, ओजल वर्मा, मगरलोड ले पुनुराम साहू, तेजस्वरी साहू, राजश्री और राजवीर साहू, अमरपुर पेंड्रा ले दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल और लबी श्रीवास्तव, सांकरा भूमिया तिलदा ले मनोज निषाद, प्रतिभा निषाद, पूर्वी निषाद और खुशांत निषाद, बठेना ले बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सारागांव ले सुजान, सुहद्रा, आयुषी और कृत वर्मा, हथबंद करेली ले भूपेश ध्रुव, शुभम, मनीष और श्याम ध्रुव, बेलरगांव ले मिथिलेश देवांगन, मधु, हिमांशु और अंकित देवांगन, कमरौत महासमुंद ले देवकी पटेल, पुष्पा, यशोदा, छोटी और एनिमा पटेल, धरसिवा ले छोटूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, रानू, खुशी, प्रवीण और सीएल यादव। एकर संगे संग हमल ईमेल भेजे हैं हमर ये श्रोता संगीपन, पथरिया भरेवाले चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी, नोमेश, नेहा, वान्या सिंगरोल, लोरमी तिलकपुर ले चंद्र कुमार मरावी, चंद्रेश कुमार मालती और मयंक मरावी, परसाटोला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया, सुलोचनी, तुषारणी, खुमेंद्र मसिया, बड़गा कोदवा गुड़ान ले श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी रानी, रजनी और राहुल मरावी, कोई ग्राम भंगी टोला ले ननकाराम ध्रुवे, जामुनबाई, फीरतराम मालती, भाटापारा ले सोहन जोशी, पायल, लोकेश, अर्चना, अंकिता, वैदेही जोशी और भाटापारा ले ही हरमिंदर सिंह चावला और बानी चावला। तो आवा संगवारी हो सुनन आप मन के पसंद के ये गीत।
1: अपन हाथ ले श्रम के पुजारी, अरे अपन हाथ ले श्रम के पुजारी।

त संगवारी हो आवा सुनन कार्यक्रम के अगला गीत मंतराम पटपरिहा और उखर साथी मन के आवाज़ में। ये गीतला सुने पर हमला पाती पटोए हे हमर ये श्रोता संगी मन अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर।

त संगवारी हो, आप मन के गीत कार्यक्रम आप मन सुनत हो। कार्यक्रम में अगला गीत कांति यादव और गीता भट्ट के आवाज में एक गीत ला सुने पर हमला पाती पट हुए हैं ये श्रोता संगी मन। अछोटा धमतरी ले बिसथा राम देवांगन, मानकी बाई गणेश राम, रोहित राम, राजेश कुमार, गीतेश और धवल, लवन, काव्या और तेजस्वी देवांगन, मगर लोड ले केजूराम मालेकर, ठाकुर राम, अश्वनी मालेकर, पीपरपाला पालचुआ मुंगेली ले उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन, वंशिका दिवाकर, पावर हाउस भिलाई ले विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ वर्मा, चकरभाटा कैंप ले रूपचंद सिंगवानी, सपना, गोविंदा, जयंत, मीना सिंगवानी, महासमुंद ले भीषम दास मानिकपुरी, नर्मदाबाई औ दीपक लच्छ मानिकपुरी, डंगनिया पाटन ले सूर्या औ मेधा कश्यप, भाटापारा ले रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, नसीर खान, अयाज, अल्फैज खान औ महजबीन बानो, लाहौद ले कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर, राजकुमारी पटेल, पहंदा कोरबा ले सम्मेलाल कुर्रे, सावित्री देवी कुर्रे, सरक बुंदिया ले गब्बर साहू, निर्मला साहू और शारदा विहार, अमलीडी रायपुर ले मोहनलाल देवांगन, प्रभा देवी देवांगन, रामनगर रायपुर ले राजेश अंबादे, शशिकला अंबादे, पूजा अंबादे, कोरदा लवन ले भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम, गुलशन, शिव कुमारी, हेमलता, उबेद किरण शर्मा, भरदा कला ले रोम कुमार साहू, किरण, खुशी, मुस्कान और लक्की साहू। एकर संगे संग ईमेल भेजे हैं हमार ये श्रोता संगी मन। अम्बागढ़ चौकी ले रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रिहान, नागर कोहरा, राजनांदगांव ले बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, बाबा कुटीर रायगढ़ ले शिव कुमार, संक्रांति और उत्कर्ष चौहान, सौंगा मगरलोड ले फनेश कुमार, सावित्री देवी, रोहित कुमार, देविका, मोहित कुमार, गजेंद्र, हियांश और चंदन, पीपरलोट सरगांव ले दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा, लोहारीडी कबीरधाम ले अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत और निशांत साहू।

संगवारी हो, आप मन के गीत कार्यक्रम में अगला गीत कुसुमलता ठाकुर और गौतम चंद जैन के आवाज में ये गीत ल सुने पर हमारे पातिपट हुए हैं ये श्रोता संगीमन भाटापारा ले बचकामल मोतीलाल यादव डॉक्टर वसंत परिगु विनय ठाकुर सोना ढीले सुब्रत चौधरी मोपका भाटापारा ले दयालु राम वर्मा तेज राम सहदेव चिरंजीवी वर्मा रोहासी ले डगेश्वर राम साहू गौरव साहू भुवन और घनश्याम साहू दुर्ग ले राकेश वर्मा सचिन वर्मा वाणी वर्मा सिमगा ले रमेश कुमार यादव माया यादव रिंकू सन्नी कोमल यादव रायपुर ले अरुण वर्मा अनिल वर्मा ईश्वर और दिनेश वर्मा करही भदर ले पुरुषोत्तम निर्मलकर शारदा देवी गीतिका लोचन कृष्ण कुमार निर्मलकर राजिम ले अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव महासमुंद खट्टी ले सुभाष शर्मा छाया शर्मा कुमुदिनी शर्मा ओंकार शर्मा प्रेमलाल उपाध्याय संतोष खुशी और खुशबू उपाध्याय जवाहर नगर दुर्ग ले आरसी कामड़े करुणा मीना और विपुल कामड़े नानघाट अड़ारले चांदनी माखन वर्मा राहुल गोपी भूपेश दीपेश वर्मा और यही गीत सुनने पर ईमेल भेजे हैं ये श्रोता संगीमन कन्नेवाड़ा ले देवव्रत सोनवानी गीतिका गुड़िया आशीष टेमरे राहुल साहू और रिकेश करही भदर ले पुरुषोत्तम निर्मलकर शारदा निर्मलकर लल्ली गिन्नी भूमि ओपरी बुड़सरा नैला ले प्रमोद कुमार साहू बोगाटोला मोहला मानपुर ले मालिक राम सिन्हा तारामती इंदु चांदनी मुनिंद्र सविता देवी सिन्हा लोरमी चचेड़ी ले शंकर कोलाम संतोषी संजय संध्या और शिवम कोलाम बाघामुड़ा ले बाघामुड़ा कोमा खान ले प्रज्ञानंद देवांगन नंदिनी प्रकाश गायत्री यशवर्धन और यशस्वी देवांगन।

संगवारी हो, आप मन के गीत कार्यक्रम आप मन सुनत हो त आवो अब आप मन ल सुनावन एक कार्यक्रम के अंतिम गीत। ये गीत ल सुने पर हमला पाती पठोए हैं हमारे ये श्रोता संगी मन लच्छनपुर ले रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू, देवरी भाटा पाला ले कन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, बंगला मटिया, जिला बालोद ले शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे, बिलासपुर ले सुरेश पांडे, सरिता भाव्या, शौर्य शैल और संध्या पांडे, दतरंगी ले भागवत वर्मा, गुलाब वर्मा, हिमकेश्वर और के आर साहू, शीतलानगर दुर्ग ले शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, चनागांव जिला धमतरी ले धर्म सिंह शोरी, गजानन नेताम, विष्णु साहू, नंदलाल मरकाम और कोमल शोरी, सुरसुली ले कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र और योगेश यादव, हिच्छा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश और ऋचा गायत्री वैष्णव, बेमेतरा ले भरत लाल सिन्हा, लक्की लव और मुरली मनोहर सिन्हा, सिर्री गाता पारे लावण्या, उपासना, देवराज, ओम कुमार, पुष्पराज और प्रभुराम साहू, अहिवारा जिला दुर्ग ले पेंटर डबल कुमार, डब्बू धीवर, संजय कुमार, इंद्रजीत, राजू धीवर, जतिन, हेमन राज, बाबू, लव्य, लक्ष्य, लच्छू, आंचल, माही और बेबी धीवर, खैरबाना ले जलेश्वर, मीरा, परमानंद, संतोषी साहू। यही गीतला ईमेल भेज के सुनना चाहे हैं ये श्रोता संगीमन। रसेड़ा ले मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति कुमार और डिकेश साहू। तखतपुर ले मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा। दतरंगी ले भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। बुड़गहन ले राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। लच्छनपुर ले मोपका भाटा पारा ले भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित, दादू और सुमित्रा साहू। ता आवा सवनन आप मन के पसंद के और कार्यक्रम के ये अंतिम गीत।

प्रसंगवारी हो कुलेश्वर ताम्रकार के ये गीत गाय गीत के संग मा आज बर कार्यक्रम मा बसत केच कार्यक्रम बर गीत जोड़े रहिन हे बीर भान साहू। अब बेरा हो गए हे आप मन ले विदा लेहे के। अपन संगी अमन पांडे ला देवो विदा। जय जोहार।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर
1: तथा
2: ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी
1: तथा वृद्धावस्था में स्वास्थ्य और सम्मान
2: आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार। अब आकाशवाणी के
3: नमस्कार, आकाशवाणी के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
4: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
4: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल

0: पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार बुलेटिन अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। कार्यक्रम खेती की बात में आज जानकारी का विषय है पशुओं में न्यूमोनिया रोग।
2: पशुओं के फेफड़ों का रोग है न्यूमोनिया। इसमें वायु नलियां एवं फेफड़ों में शोध हो जाता है, जिसमें पशुओं को सांस लेने में कष्ट हो जाता है। पशु को तीव्र ज्वर आता है तथा साथ ही साथ नाक से पानी जैसा द्रव्य आता है, जो आगे जाकर गाढ़ा हो जाता है। फेफड़ा ठोस हो जाता है तथा चिकित्सा के अभाव में रोगी पशु की मृत्यु हो जाती है। इसके प्रमुख कारण हैं जैसे पशु का ठंड व सर्द हवाओं में कई घंटों या कई दिनों तक रहना, धूल व कष्टदायक गैसों की उपस्थिति में सांस लेना, वातावरण में अचानक परिवर्तन हो जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं का परिवहन में लंबा समय देना, गलत तरीके से दवा पिलाना, जिसमें कभी कभी दवा मुंह की जगह श्वास नली में चली जाती है। श्वास नली संबंधी अन्य रोगों की अपेक्षा गंदी व तंग जगहों में जानवरों को रखना, जीवाणुओं एवं विषाणुओं का संक्रमण, परजीवियों का संक्रमण, फफूंद का संक्रमण या अपर्याप्त पोषण। रोगी पशु के लक्षण हैं, पशु के शरीर में तेज कंपन, कंपकपी और घबराहट होती है, तेज व कष्टकर श्वास लेने लगता है, पशुओं का शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, पशुओं के फेफड़े से असामान्य आवाज आना, कफ खांसी व बलगम में रक्त का आना, नाक से गाढ़ा व कुछ लाल व हल्का भूरा रंग का स्राव होना, कुत्तों में अत्यंत ज़्यादा कफ का आना, भूख न लगना, उल्टी आना, श्वास लेने में कठिनाई होना तथा असामान्य आवाज़ों का आना। रोग ठीक होने की स्थिति में शरीर का तापक्रम धीरे धीरे कम होते हुए सामान्य हो जाता है, परंतु यदि बढ़ा हुआ तापमान अचानक कम हो तो यह खतरे का सूचक है। जीवाणु जनित न्यूमोनिया कई तरह के जीवाणुओं के संक्रमण से होता है, जिसमें माइकोपलाव जमाव पास्चुरैला मुख्य हैं। इसमें न्यूमोनिया के साथ साथ श्वासनी के अन्य भाग भी प्रभावित होते हैं। कष्टप्रद कफ तथा खांसी होती है। शुरू में नाक से पतला द्रव आता है जो बाद में गाढ़ा हो जाता है। सांस लेने में परेशानी, जिससे नथुने फैले हुए रहते हैं। तापक्रम का तेजी से बदलना। पशु को चलने फिरने में कठिनाई तथा खाने पीने में कमी होती है। पशु को सुस्ती अरुचि होती है तथा नाड़ी का दर बढ़ता है। पशु दांत पीसता है तथा रोगग्रस्त फेफड़ों की तरह से धरधराहट की आवाज़ आती है। नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है। विषाणु जनित निमोनिया के अंतर्गत कई तरह के विषाणुओं से संक्रमण होता है, जिससे एडिनो राइनो पैराफ्लूम जहा विषाणु मुख्य हैं। शुष्क एवं कष्टप्रद खांसी, नाक से पतला

0: पसराव आता है जो बाद में गाढ़ा व पीला हो जाता है। शरीर के तापमान का बढ़ना 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। श्वास गति अधिक हो जाती है। पशु खाना पीना कम बाद में बंद कर देता है। परजीवी जनित निमोनिया, इसमें एस्केरिस मुख्य है। इसके अंतर्गत तेज खांसी आना, पशु के मुख से श्लेषा के टुकड़े बाहर आते हैं। यह प्रवाह श्वास नली का होता है। कभी कभी मुंह से बाहर आए हुए प्रवाह में कमी भी आती है। नाक से गाढ़ा पीला पदार्थ बाहर आता है, जिससे कभी कभी कृमि भी होते हैं। तापक्रम प्रायः सामान्य होता है। श्वास लेने में परेशानी होती है। पतला दस्त होने के कारण भी कमर कमजोर होती है। पशु लकवा ग्रस्त हो जाता है। प्रसव पूर्व दुधारू पशुओं की समस्याओं का निदान, गर्भावस्था का ऐठन या घूमना, गर्भाशय की जांच कर वस्तु स्थिति की परख करनी चाहिए। वेजाइना द्वारा गर्भाशय के घूम जाने ऐठने की जांच सरलता से की जा सकती है। गर्भाशय के घूमने ऐठने की दिशा में ज्ञान इसी प्रकार किया जा सकता है। अधिक पुरानी व्याधि न हो तो पशु को लिटाकर ऐठन के उल्टे दिशा में झटके से घुमाने पर सामान्य स्थिति में गर्भाशय आ जाती है। ज़्यादा दिन होने पर रक्त धमनियों में भी ऐठन का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण नेक्रोसिस, भ्रूण की मृत्यु एवं गाभिन पशु के जान जाने की संभावना होती है। इस दैहिक उपचार के साथ साथ दर्दनाक औषधियां जैसे एनफ्लोवेट, पैरिजेसिक इत्यादि लगाया जा सकता है। शॉक से बचने के लिए नॉर्मल सेनाइन औषधि के साथ साथ जीवाणुओं के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक जैसे म्यूनोमाइसिस, एम्पिसिलिन, क्वालिक्लिसमिन, एनरोसिन आदि का आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए। गर्भाशय के पलटने के निदान के लिए ऐसे पशु को प्रथम तो सपाट कच्ची जमीन से बांधना चाहिए। यदि पेशाब रुकी हो तो कैथेटर लगाकर पेशाब की नली से पेशाब की थैली को खाली करने का प्रयास करना चाहिए। पेशाब की थैली खाली हो जाने पर पलटे योनि गर्भाशय सविक्टस को पोटेशियम परमैंगनेट के 1% घोल से धोकर या कोई भी एंटीसेप्टिक घोल जैसे बिडाटिन से धोकर धीरे धीरे दबाकर अंदर करना चाहिए।
1: कार्यक्रम खेती की बात में अभी आप सुन रहे थे पशुओं में न्यूमोनिया रोग के विषय में जानकारी। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। अब पेश है बहनों का कार्यक्रम घर आंगन।

योग शरीर की भाषा है, संगीत मन की आवाज। दोनों के संयोग से जीवन को शांति, ऊर्जा और मधुरता से परिपूर्ण हो जाती है जीवन की राह। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है श्रोता बहनों आप सभी का घर आंगन कार्यक्रम में, जिसे लेकर आप सभी सखियों के बीच उपस्थित हूँ मैं। कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को आपकी सखी शुभिता का प्यार भरा नमस्कार। इस दोपहर आपसे मुलाकात हो रही है सखियों, आज का दिन तो आपके लिए भी व्यवस्था बहुत व्यस्त रहा होगा, है ना? और ख़ासकर क्योंकि सप्ताह में आज के दिन सभी परिवार के सदस्य एक साथ होते हैं रविवार के दिन, और साथ से याद आया बहनों, आज का दिन और भी विशेष है क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और आपने भी सुबह सुबह उठकर अपने परिवार के साथ योग किया होगा, है ना? या फिर आप भी गई होंगी योग करने के लिए अपनी सखियों के साथ में। जी हाँ सखियों, आज का दिन और भी विशेष है क्योंकि 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ ही साथ संगीत दिवस भी मनाया जाता है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हम बात करें तो इस वर्ष का विषय था आयु, स्वस्थ आयु के लिए योग। सखियों, योग और संगीत दोनों ही हमारे जीवन को स्वस्थ, सुखी और संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहनों, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का एक प्राचीन भारतीय पद्धति से परिपूर्ण माध्यम है। नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मानसिक तनाव भी कम होता है और एकाग्रता भी बढ़ती है। हम महिलाओं के लिए योग विशेष रूप से लाभकारी है। यह शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ मानसिक शांति और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट योग करने से कई स्वास्थ्य जैसी समस्याएं, जैसे यदि हमें हमेशा मानसिक अशांति लगती है या

शारीरिक समस्याएं लगती हैं, तो इनसे बचा जा सकता है। योग और संगीत दोनों ही स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। योग शरीर को स्वस्थ बनाता है और संगीत मन को आनंदित करता है। यदि दैनिक जीवन में हम दोनों को शामिल करें तो जीवन अधिक संतुलित और खुशहाल बन जाता है। बहनों, योग और संगीत से मन खुश हो जाता है और यदि मन खुश है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है ना? तो क्यों ना अनुरागी मन को भी खुश किया जाए।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बहनों, इस संदेश से पहले आपने जो गीत सुना उसे हमने लिया था फिल्म रजनीगंधा से। आवाज थी लता मंगेशकर की। इस गीत को संगीतबद्ध किया था सलील चौधरी ने और शब्द रचित किया था योगेश ने। बहनों, अब आपसे वक्त है बातचीत करने का, जी हाँ, फोन के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने फोन इन बात करें गीत सुने की ओर।

0: योग हमारे शरीर मन और आत्मा को संतुलित करने का माध्यम है, वहीं संगीत हमारे जीवन में आनंद शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। बहुत बहुत स्वागत है श्रोता बहनों आप सभी का आज के फोन इन बात करें गीत सुने में। आज के फोन इन क्रम को ले आई हूँ मैं आपकी सखी शुभिता। और चलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस विषय को लेकर आज फोन इन कार्यक्रम में हम आपके बीच उपस्थित हैं और देखते हैं बहनों कि आज हमारी सखियां क्या कर रही हैं और क्या कहना चाहती हैं इस विषय को लेकर कि तो आइए बात करते हैं उनसे और सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद के गीत भी।
1: हेलो
2: हाँ नमस्ते।
1: हाँ नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फोन इन बात करें गीत सुने में। हमारी कौन सी सखी हमसे बात कर रही है?
2: मैं ग्राम इंजानी बहेरा से सुमन पटेल बोल रही हूँ।
1: जी सुमन, कैसी हैं आप?
2: मैं तो अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। देखिए बारिश की फुहार भी आ गई है और हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस भी मना रहे हैं ना, तो आप क्या कहना चाहेंगी इस विषय को लेकर सुमन? तो देखिए योग और संगीत का तो आपस में सम्मिलन है ना, दोनों आपस में ही मिले हुए हैं। संगीत में भी बहुत अच्छा मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और योग करके शरीर भी बहुत स्वस्थ रहता है, तो क्या कहना चाहेंगी आप इस दिवस के अवसर पर अपनी सखियों?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी क्योंकि देखिए आदमी का कुछ भी जैसे कि हाथ पैर दर्द करता है, कोई भी शरीर योगा अगर करते है ना तो उससे देखिए दवाई से बढ़कर भी इलाज हो सकता है।
1: जी जी,
2: है ना, क्योंकि देखिए हम एक्सरसाइज करते हैं सुबह शाम, सुबह भी एक घंटा करें शाम को भी करें ना, तो हमको तो ये लगता है कि हॉस्पिटल जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा।
1: और जैसे हमें भोजन चाहिए होता है वैसे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अच्छे वातावरण में शुद्ध श्वास की आवश्यकता होती है और
2: जी।
1: है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात कही। और संगीत से तो आप लोग जुड़े ही हुए हैं क्योंकि
2: संगीत से तो मैं आज से नहीं बहुत बचपन से जुड़ी हुई हूँ।
1: जी जी जी,
2: मुझे बेहद एकदम पसंद आता है, खुशी भी होती है।
1: अच्छा
2: जी, अब मैं पहले से आज नहीं हमेशा भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जुड़े रहें कम से कम 5 मिनट समय निकाले।
1: बिल्कुल।
2: अभी क्या है कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल गई थी तो मुझे हॉस्पिटल से भी कुछ सलाह मिली थी और बहुत जगह से मिलती है क्योंकि योगा करने से हमको कितना लाभ है हमको समझ में आ गया है। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने ये संकल्प कर लिया है कि खुद भी करेंगे और दूसरों को भी करवाएंगे?
2: हाँ हम जी कर लिए हैं और बहनों से भी हमारा निवेदन है कि खुद भी करें एक दूसरे को भी सलाह दें और संगीत से भी जुड़ी रहें क्योंकि संगीत से क्या है हमको इतनी खुशी मिलती है कि अपने अंदर जितना गम रहता है कष्ट रहता है संगीत से देखिए दूर हो जाता है।
1: बिल्कुल, तो हमारी बिल्कुल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व योग दिवस की और विश्व संगीत दिवस की भी। और यूं ही रेडियो के साथ ही बनी रहें आप, हमारा घर आंगन कार्यक्रम भी सुनते रहें। तो सुमन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज आप अपनी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
2: देखिए मैं बारिश भी हो रहा है तो मैं बारिश से ही लेके गाना सुनूंगी, फिर लम्हे पिक्चर का सुना दीजिएगा मेघा रे मेघा करके है।
1: जी बिल्कुल, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा सुमन, यूं ही हमें कॉल करते रहिएगा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। फ़ोन इन, बात करें, गीत सुनें, घर आंगन कार्यक्रम के अंतर्गत। आप सखी कहा जी, आप कहाँ से बोल रही हो और कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: जी, मैं कस्तूरबा लखनपुर आवासीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी से बोल रही हूँ और मैं यहाँ एज अ लेक्चरर पदस्थ हूँ। मेरा नाम अनुराधा सिंह है।
0: जी, कैसी हैं अनुराधा जी आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं?
0: जी, तो अनुराधा जी, जैसा कि आप एक शिक्षिका हैं, जैसा कि आपने बताया, तो आज तो एक विशेष दिन है। जी हाँ, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं और साथ ही साथ विश्व संगीत दिवस भी। तो आप सुनने वाली हमारी सखियों को क्या कहना चाहेंगी, और एक शिक्षिका होने के नाते आप योग को कितना महत्व देती हैं?
1: देखिए, एज अ टीचर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कि समाज के प्रति थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, और मेरे यहाँ चूंकि 200 छात्राएं निवासरत हैं और मैं डेली उनके मॉर्निंग शेड्यूल में योगा जुम्बा जैसी एक्सरसाइज को शामिल करती हूँ, और मेरा ये मानना है कि योग ही एक स्वस्थ जीवन जीने का सही तरीका है, और
0: बिल्कुल
1: ये ना सिर्फ हमारा मानसिक संतुलन सही रखता है बल्कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है।
0: तो मतलब हर किसी को इसे अपनाना चाहिए, और भारत में ही इसकी शुरुआत हुई थी और अब इसे विश्व में भी हर कोई जानने लगा है और इसे अपनाने भी लगा है। तो
1: जी
0: आप भी करती हैं योग निरंतर?
1: हाँ, मैं भी योग करती हूँ क्योंकि जो मैं पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल कुछ कंडीशन की वजह से मेरे हेल्थ में काफी गड़बड़ी थी, लेकिन वर्तमान में योगा करने से मुझे मेरे स्वास्थ्य में काफी सुधार है और मैं दूसरों को भी प्रमोट करती हूँ कि वे करें।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ, जैसे कि आप एक ऐसे वातावरण में रहती हैं जहां सांस्कृतिक

0: पाठ्यक्रम भी किए जाते होंगे, तो संगीत का महत्व भी तो खास ही होगा आपके जीवन में।
1: जी जी, हमारे विद्यालय में हमारी एक अच्छी म्यूजिक टीम है और काफी नाम है उस टीम का, और मैं मानती हूँ कि म्यूजिक जो है बच्चों को मन को एकाग्र करने में और उनके लाइफ में उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी हेल्प करता है, क्योंकि बच्चे इससे खुश मिजाज रहते हैं और काफी मन लगा के काम करते हैं, तो हमारे यहाँ काफी संगीतमय वातावरण है।
0: जी बिल्कुल, तो ये बताइए अनुराधा जी कि योग और संगीत के साथ साथ बच्चों में आप बहुत ज़्यादा एक स्वस्थता की राह पे चला रही हैं बच्चों को, तो क्या बच्चे भी इसे अपनाते हैं और खुश होते हैं?
1: जी जी बिल्कुल, मेरे यहाँ की बच्चियाँ बहुत बढ़ चढ़ के चाहे वो संगीत हो, योगा हो, खेल हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और समाज में अपना एक नाम बना रही हैं।
0: जी, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान एक शिक्षक का भी होता है, और आपने भी अपने जीवन में योग को अपनाया है, संगीत की ओर आप आगे अग्रसर कर रही हैं अपने विद्यार्थियों को, तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और आप चलते चलते आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: लता मंगेशकर जी के तो सारे ही सॉन्ग अच्छे हैं,
0: कोई
1: तेरे
0: भी
1: प्यार की उम्र हो इतनी सनम,
0: जी
1: तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म।
0: जी जी जी बिल्कुल, हम आपको ये प्यारा सा गीत ज़रूर सुनवाएंगे अनुराधा जी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप यूं ही योग करते रहें, स्वस्थ रहें, और अपने पूरे अपने विद्यालय परिवार को भी यूं ही स्वस्थ रखते रहें, और अगली बार आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। और कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार
1: आकाशवाणी अंबिकापुर।
0: जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका फोन इन बात करें गीत सुने में। और हमारी कौन सी सखी हमसे बात कर रही है?
1: हाँ मैं विश्रामपुर से बबीता सिंह।
0: जी बबीता जी कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ स्वस्थ हूँ।
0: जी जी बबीता जी, और आपने कहा आप ठीक हैं स्वस्थ हैं, तो आप ज़रूर योग अभ्यास ज़रूर करती होंगी क्योंकि आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है ना। आपको
1: हाँ,
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की और साथ ही साथ विश्व संगीत दिवस की भी। आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं अपनी सखियों से फोन इन बात करें गीत सुने क्रम में।

0: मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ।
1: जी जी बबीता जी, और आपने कहा आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो आप ज़रूर योग अभ्यास ज़रूर करती होंगी, क्योंकि आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है ना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, और साथ ही साथ विश्व संगीत दिवस की भी। आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, अपनी सखियों से फोनिन बात करेंगे सुने क्रम में, तो आप क्या कहना चाहेंगी बबीता जी?
0: आपको भी योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं
1: जी,
0: आपका भी जीवन स्वस्थ और मंगलमय हो। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी, योग हमारे जीवन का एक सतत अभ्यास है, और योग ही ऐसी एक प्रक्रिया है जिससे हम योग और प्राणायाम करके अपने मानसिक शांति को बना सकते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ, सुंदर और संतुलित भी रहता है। तभी हम अपने दिन भर के जीवन में दिनचर्या के काम को आसानी से कर सकते हैं,
1: क्योंकि
0: स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: योग का यही महत्व है कि हम अपने मन को और अपने तन को दोनों को ही स्वस्थ और सुंदर रखते हुए अपने जीवन की यात्रा को सफल और सुंदर बना सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है आपने कि स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा, और मन भी स्वस्थ है तो योग करना बहुत आवश्यक हो जाता है ना। तो इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा हम महिलाओं को विशेषकर बनाना ही होगा, क्योंकि पूरा घर जो है, कहा भी जाता है कि आधार होती हैं महिलाएँ, और यदि महिलाएँ स्वस्थ हैं तो पूरा परिवार भी स्वस्थ रहता है, है ना।
0: ये घर का तो पूरा रीढ़ ही है महिला, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसके बगैर तो जीवन किसी का चलना बहुत मुश्किल है परिवार का।
1: जी बिल्कुल, बच्चों को संभालना हो, घर के बुजुर्गों को संभालना हो, या परिवार की को संभालना हो, तो हर चीज में हर वक्त महिलाएं ही खड़ी होती हैं, और खासकर सेहत का ध्यान रखना हो परिवार का, तो यदि वो खुद कदम उठाती हैं इस ओर, तो ये स्वाभाविक तौर पे ये बात आ जाती है कि सभी स्वस्थ रहते हैं, है ना।
0: हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि आजकल तो बहुत सारे योग के प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे, है ना, ऑनलाइन भी दिखाते हैं, जिनसे महिलाएं घरेलू काम करते हुए भी, जैसे सब्जियां बना रही हैं तो उसमें भी आप चलते फिरते भी कुछ ना कुछ प्राणायाम वगैरह, है ना, शारीरिक व्यायाम करते हुए अपने घर का भी काम कर सकती हैं, ऐसा है। और मैंने भी एक ज्वाइन कर रखा है योग का, उसमें जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी जी जी जी, तो मतलब आप समय चुरा कर अपने लिए समय निकालती हैं, और
0: शरीर के साथ साथ में दोनों कर लेती।
1: जी जी जी बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं के पास तो बिल्कुल समय नहीं होता है सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या में, और समय चुराना भी बहुत आवश्यक है अपने लिए, क्योंकि आगे के लिए यही हमारी पूंजी होगी, है ना। तो योग से संचित करें स्वास्थ्य का धन, तो इसी विषय में आइए अब हम आपसे जानते हैं कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे बबीता जी।
0: हाँ, छूकर मेरे मन को एक फिल्मी गाना है, मैं सुनना चाहूंगी।
1: जी जी, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद दीदी, नमस्कार।

सखियों, अभी हमने आपसे बातचीत करी और सुनवाए अपनी सखियों को उनकी पसंद के गीत और योग दिवस और विश्व संगीत दिवस पर भी बातचीत करी। अगर आप भी हमसे बातचीत करना चाहती हैं और सुनना चाहती हैं अपने पसंद के गीत, तो आप हमें कॉल कर सकती हैं हर शनिवार सुबह 10:30 से लेकर 11 के बीच। हमारे फ़ोन नंबर है 2319172319918 और आपको मोबाइल से कोड लगाना होगा 0774। बहनों, इसी उम्मीद के साथ कि फिर होगी मुलाकात, और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं मेल के माध्यम से। आज के घर आंगन कार्यक्रम से अपनी सखी शुभिता को दीजिए विदा। नमस्कार।

बहनें सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम घर आंगन, मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। अब पेश है कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

श्रोताओं, खुशी इत्र की तरह होती है, इसे खुद पर छिड़किए, इसकी खुशबू सभी को खुश कर देगी। तो चलिए इसी खुशबू के साथ बढ़ते हैं सुरों के सफर में, कार्यक्रम ईमेल की गूंज में। और आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है, खुशामदीद, आप सभी को रैना का नमस्कार। आज पूरी दुनिया में संगीत दिवस मनाया जा रहा है। संगीत यानी वो जादू जो हमारे दिलो दिमाग पे छाया रहता है ना? गीत संगीत का ये खुमार ही तो है कि आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, पसंद करते हैं और आप कार्यक्रम में अपनी फरमाइशें भेजते हैं। तो चलिए सुनते हैं आपके पसंदीदा गीतों को। कार्यक्रम में ये पहला गीत, फिल्म का नाम है चिचोर, गाय कलाकार हैं हेमलता और यशोदास, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में चित्तौर के इस गीत को सुनना चाहते थे विदर्भ जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन और आदेश कुमार काले, इंदिरा चौक तकतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विशाल, मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, मेहरनगर उमड़खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौहाणकर राहे, सरिता गौहाणकर, प्रिंस एकांश गौहाणकर, अर्जुन गौहाणकर टुक टुक, इस गीत को सुनना चाहते थे शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी, बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभमन, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और इसी गीत को सुनना चाहते थे धनोरा बस्तर से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर, शिवांशु रिशु, अक्षय कुमार, अभिषेक नायडू और ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति प्रहलाद, निधि निखिल वर्मा, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, बोरखेड़ा पित्रामल आप हैं जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से और लगान पंडरिया से आप सभी श्रोता साथी हैं, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, डियर पाटन गुजरात से धीरज वीर रावारी, ग्राम सौंगा मगरलोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देवी करानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार, राजकोट से पूजा पायल, प्रवीण सोनी, कंचन कुसुम, कलावती सोनी और रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग, इस गीत से कार्यक्रम से जुड़ने वाले हमारे श्रोता साथी थे गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर लोबना अंसारी, अरे अंसारी, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल

खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और प्रवीण हागोने और पार्थ हागोने और पूरा हागोने परिवार बेड़ी मध्य प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहते थे। हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर, बुलढाणा वड़सिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा मानकर, दीपाली मानकर और श्लोक, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, गीतिका रानी, भानु प्रकाश, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता आकाश, आयुषी सागर, यशी हनी, पूजा सीता और परिवार के सभी सदस्य, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, दानिश आशिफ शेख, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो और हितेंद्र दास, आप हैं आसाम से। अब कार्यक्रम में सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म गीत का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं इंदीवर ने और धुन बप्पी लहरी ने बनाई है। आइए सुनते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, गीत संगीत के बिना जीवन है क्या, है ना। लीजिए सुनिए इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला ओम कुमार और रामानुज नगर भैसामोड़ा जिला सूरजपुर से सुखराम सिंह मरावी, सुहानी सिंह, बिमला सिंह, अनारकली बाजार जगरा पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, जगदलपुर बस्तर से पुष्पांजलि नायडू, प्रीतम, अमृता, संतोष, दुर्गेश कुमार, ग्राम पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से इसी गीत से जुड़ने वाले हमारे श्रोता हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश निवान, सौरव साइना और मैंडी शर्मा, राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से इसी गीत को सुनना चाहते थे राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा, पीहू स्वर्णकार, अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह, प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम सुभाष यादव, चंदन एकनाथ जाधव, संगीता जाधव, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, नीरज रावत, शुभम सौरव रावत, राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार, संदीप कुमार पांडे, कृष्ण कुमार, चितरंजन यादव, सुनील कुमार, तेज कुमार साहू, रविशंकर राजवाड़े, मनीष कुमार साहू और गंगेश्वरी भास्कर, कविता मांझी, श्वेता कुलदीप, सुचि कश्यप, जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा और शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, ऋतु मुकेश जगताप, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर, सरोज चौक अमरावती से कमरोला ठेकेदार और नसीम बेगम। और अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सावन को आने दो। गीत को लिखा है गौहर कानपुरी ने और संगीत राज कमल का है और इस गीत को सुनना चाहते हैं वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम विशाल, प्रिय

या दिशानी निमिता आहूजा, बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाणे, भारती रंभाणे, वैष्णवी हरसेल रंभाणे और जानवी रंभाणे, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन और संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश काले, गुंजन सालोनकर और ये सभी श्रोता आप सभी हैं शेगांव बुलढाणा महाराष्ट्र से। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

इसी गीत से जुड़ने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही मेहरा जहां, और धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, जवाहर नगर दुर्ग से अरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्वनी, विपुल कांबड़े, और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से आप सभी हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी। पद्मा टॉकेज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह। ऊपरकोट मोहल्ला बुलंद शहर चौखंटी से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म प्रेम गीत से जगजीत सिंह की आवाज में। गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत जगजीत सिंह का है, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी ही श्रोता साथी।

अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट रुद्राणी और कृष्णा केवट, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, भोला वाकतरिया, प्रवीण रियांश और प्रतीक वाकतरिया, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ताजमंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बिनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराड़े, सफिया रहान खोकर और मोहम्मद हसनैन पवार, बुड़गान छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश कुमार, चंद्रकला शशिकांता प्रजापति और लोनमे ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी, और झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत।

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज, और अभी आप फिल्म प्रेम गीत का गीत सुन रहे थे। इसी गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया था कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका पुनावले, पुणे से अजय सोनवाने, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवाने, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, सोपान तांडे, नारायण इंगले, गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल

योगेश कुमार, दीपक कुमारी, पूजा खटक और छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, उच्च भट्टी बिलासपुर से मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष शिवनिया, अनु गोस्वामी और दतरंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नुखेलाल वर्मा, ग्राम पंचायत खूंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घूर्णी पैकरा, करिश्मा सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि ऐश्वर्या पैकरा, बनियापारा धमतरी से इसी गीत को सुनना चाहते थे रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और पूरा माखीजा परिवार, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता। और अब कार्यक्रम में सुनिए फिल्म ताल का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत एआर रहमान का है और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता साथी। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी, उमा तिवारी और बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, धाड़ी नांदुड़ा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे, शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया और विशाल, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति और गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम और पाकुड़ झारखंड से श्वेता भगत, केसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, बोढ़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, अकोला से सुयश राय, अलका राय, दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, दुर्गा कॉलोनी हंसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी बबू डब्बू, गांव हीरावाली फजल का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति, डिक्कीस साहू, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्ने अन्विका, तनुश्री और पेहरा बाजार जुमली तलैया गेडी से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी प्रियंका, गुड्डू कुमार मुन्ना, मुन्नी देवी, जय प्रकाश राव, रिया जिया टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू और ग्राम राजापुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंदेल दास देवांगन, रीता दास, जतिन कुमार, चंद्रावती सिंह मरावी, नूरसाय राजवाड़े, समीर सिंह मरावी, सोनू मरावी, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, देवरी भाटापारा से के आर साहू, कमलेश गनूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म ताल का ये गीत।

आज कार्यक्रम ईमेल की गूंज में हमने 70-80-90 के दशक के आइकॉनिक गानों को कार्यक्रम में शामिल कर खुशियों वाली इत्र की खुशबू बिखेरने का छोटा सा प्रयास किया। उम्मीद है ये खुशबू आप तक पहुंची हो। कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।

0: अब कार्यक्रम ईमेल की गूंज रैना को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल की गूंज, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्रों को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है, बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार।

0: उपहार है।
1: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
2: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताबते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
3: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से

0: अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
2: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई की 17,00,000 बच्चों से लगभग 15,50,000 बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित तो उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10,00,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरो मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफान

0: ने बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर समाचार बुलेटिन अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं। अब पेश है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा।

दिल रह गया हमारा एक बार मुस्कुराकर। अभी आप चंदनदास की आवाज में ये गजल सुन रहे थे। शायर थे रिफत सरोस। आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत कंधा। लीजिए अब सुनिए अब्बासदाना का कलाम अल्ताफ रजा की आवाज में। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा।

क्या सफर है और क्या सामान है, जिंदगी है और दिले नादान है, क्या सफर है और क्या सामान है, मेरे गम को भी

0: आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहमी सी चाह हो जैसे। आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहमी सी चाह हो जैसे। और लोग यूं छुप के प्यार करते हैं कि प्यार करना गुनाह हो जैसे।
1: चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है।
0: यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है। कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा

न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। और सुना है वो भी मोहब्बत का शौक रखने लगे, जिन्हें खबर ही नहीं कुछ वफा।

अभी आप अल्ताफ रजा की आवाज में ये कलाम सुन रहे थे। शायर थे अब्बास दाना और संगीत मोहम्मद शाहनियाजी का था। लीजिए आप सुनिए भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में ये गज़ल। शायर हैं कतील राजस्थानी।

अभी आप भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में कतील राजस्थानी का कलाम सुन रहे थे। कार्यक्रम गीत गंधा के आखिर में लीजिए सुनिए आशीष कौर की आवाज में ये गीत। गीतकार है निर्माण और संगीत अभिजीत वाघाणी का है।

सीस कौर की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे। गीतकार थे निर्माण और संगीत अभिजीत वाघाणी का था। और इसी के साथ गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है। सभा समापन से पहले आइए आपको बता दें आज के शेष मुख्य आकर्षण।

हमारी शाम की सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी पेश किया जाएगा शाम 5:30 पर। इसमें आप सुनेंगे युवा सोच एक नए विषय पर, साथ ही सुनेंगे क्रम युवा पसंद। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। लोक संगीत का कार्यक्रम गोधूली आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। इसमें आप सरगुजिया लोकगीत सुनेंगे लखन दास और साथियों से और केंदा राम और साथियों से। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा। ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:20 पर। इसमें सामयिक चर्चा के विषय हैं पर्यावरण संरक्षण हम सबका दायित्व, स्वच्छता से ही स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चर्चा होगी। साथ ही सुनेंगे किसान समाचार, लोकगीतों का आनंद उठाएंगे, साथ ही जानेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी और मौसम आधारित कृषि परामर्श। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर और रात्रि 10:00। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3:37 हो रहे हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे से आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। इस दौरान FM 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: दीवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये नवाडी, टुकुडाण, पेंडारी, बूढ़ा डांड, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मिंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, कोटराही, भगवानपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैन पाट में हाथियों की कुल संख्या 9 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, सायर, सस्कालो, सत्तीमुड़ा, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, घोड़ाघाट, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, झिक्की, परसाडांड, पेटा, कुर्डेग, बिमड़ा, सामरबार, मैनी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 147 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, रुपुंगा, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये चचिया और गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार नवापारा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तेंदुचुआ, कोठारी, रामपुर, अचानकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:06 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में आशीष चंद्रा और सूरज उज्जैनी की लिखी ये रचना। संगीत है शंकर सेन और दुर्गा प्रसाद का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब सुनिए अनूप जलोटा की लिखी ये रचना उन्हीं के स्वर में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शेखर सेन की आवाज में ये राधे भजन। अब सुनिए अनुप जलोटा के स्वर में ये भजन।

कृष्ण भजन कार्यक्रम के अंत में सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भजन। शब्द रचना है आशीष चंद्रा और सूरज उज्जैनी के। संगीत बनाया है शेखर सेन और दुर्गा प्रसाद ने।

अनुराधा पौडवाल के गाए इसी भजन के साथ कार्यक्रम भजन संध्या आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

ये करते हैं आज के युववाणी की शुरुआत आपकी दोस्त शालिनी चौबे के साथ। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल सुबह उठते ही 5% बैटरी दिखाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जी हाँ, चार्जर ढूंढेंगे। लेकिन अगर आपका शरीर सुबह उठते ही थका हुआ लगे, मन तनाव से भरा हो और चेहरे की मुस्कान भी कहीं छुट्टी पर चली गई हो, तो क्या उसका कोई चार्जर है? जी हाँ है, योग और व्यायाम। आज 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर आज हम बात करेंगे स्वस्थ जीवन का आयाम, योग और व्यायाम। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास हर चीज़ के लिए समय है, मोबाइल के लिए, सोशल मीडिया के लिए, वेब सीरीज़ के लिए। पर जब बात आती है अपने शरीर की तो जवाब आता है, यार टाइम ही नहीं मिलता। सच तो ये है दोस्तों, टाइम मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। योग सिर्फ शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा में मोड़ने की साधना है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो केवल फेफड़े नहीं भरते, बल्कि मन भी सुकून से भर जाता है। और जब हम नियमित व्यायाम करते हैं तो सिर्फ पसीना नहीं निकलता, बल्कि तनाव, आलस और नेगेटिविटी भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। दोस्तों, योग की शुरुआत हजारों वर्ष पहले भारत की पावन धरती पर हुई और आज पूरी धरती ने इसे अपना लिया। यही कारण है कि हर साल 21 जून को पूरा विश्व इंटरनेशनल योगा डे मनाता है। इस वर्ष योगा डे का संदेश है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, अर्थात एक धरती एक स्वास्थ्य। जब इंसान स्वस्थ होगा तभी परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा और हमारी धरती भी स्वस्थ रहेगी। विशेषज्ञों ने भी कहा है कि रोज केवल 30 मिनट योग या व्यायाम दिल को मजबूत बनाता है, शरीर को एक्टिव रखता है, स्ट्रेस कम करता है, अच्छी नींद और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। तो आइए आज इस इंटरनेशनल योगा डे पर हम सब एक छोटा सा संकल्प लें, हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने शरीर, अपने मन, अपने स्वास्थ्य के नाम करेंगे। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, योग करते रहिए। और आइए सुनिए कुणाल गांजावाला की आवाज़ में फिल्म क्रश का ये गीत। गीतकार हैं विजय अकेला, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंत में सुनिए आतिफ असलम की आवाज़ में फिल्म रेस का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं प्रीतम।

0: आतिफ असलम की गाय इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं।

0: दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनः परीक्षा आयोजित की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज रायपुर जिले के अभनपुर में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को दिया प्रशिक्षण। और मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक मध्य छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग संभाग में लू के लिए जारी किया येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कुछ हिस्सों में 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग के कारण यह अब सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि भावना की अभिव्यक्ति है और यह किसी आयु वर्ग तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। इधर छत्तीसगढ़ में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल रमेन डेका आज रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित योग शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज पूरा छत्तीसगढ़ सामूहिक योग अभ्यास के माध्यम से स्वास्थ्य संतुलन और सकारात्मकता के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहा है। वहीं अंबिकापुर स्थित पीजी कॉलेज ग्राउंड में राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योगाभ्यास कर प्रदेशवासियों को नियमित रूप से योग अपनाकर स्वस्थ संतुलित और निरोग जीवन जीने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की आधारशिला होता है। इसलिए योग को केवल एक आयोजन तक सीमित न रखकर जीवन का हिस्सा बनाना होगा।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज राज्य स्तर का ये आयोजन है, इसलिए माँ महामाया की इस पवित्र धरती से मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जब भाग दौड़, तनाव और अनियमित जीवन शैली बढ़ रही है, तब योग और प्राणायाम हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है।
0: कार्यक्रम की अध्यक्षता

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग जिले के खालसा पब्लिक स्कूल प्रांगण में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए और योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। इसी तरह उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम जिले के पीजी कॉलेज में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नियमित रूप से योगाभ्यास पर जोर दिया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जांजगीर चांपा जिले के भीमा तालाब के जाज्वल्य देव द्वार परिसर में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान श्री चौधरी ने ग्राम कुटरा बोर्ड के युवा मलखम खिलाड़ी डिम्पी सिंह को स्वेच्छा अनुदान मद से 25,000 रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने नवागढ़, पामगढ़ और अकलतरा विकासखंड के लिए 3 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ की सभी 33 जेलों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान हजारों बंदियों ने योगाभ्यास किया। केंद्रीय जेल रायपुर में आयोजित योग शिविर में 500 पुरुष और 150 महिला बंदियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जेल महानिदेशक हिमांशु गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा जगदलपुर के शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रांगण में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एनसीसी, एनएसएस, पतंजलि योग समिति और युवाओं सहित लगभग 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसी तरह केंद्रीय संचार ब्यूरो अंबिकापुर द्वारा सरगुजा जिले के ग्राम सखौली स्थित उच्चतर माध्यमिक शाला में विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्र छात्राओं, शिक्षकों और ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान रंगोली और प्रश्न मंच प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज योग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनः परीक्षा आयोजित की गई। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई, जो शाम 5:15 तक चली। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी गई।

0: लिए ऐसे प्रयास जरूरी हैं। गौरतलब है कि इस मैत्री कैफे का निर्माण नारायणपुर पुलिस के कर्मचारियों ने स्वयं किया है। इस कैफे के माध्यम से आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार देने की योजना है। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि एक द्रोणिका के असर से उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के कारण आने वाले 2-3 दिन तक रायपुर और दुर्ग संभाग में लू चलने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
1: आज की स्थिति में एक द्रोणिका उत्तर छत्तीसगढ़ से तेलंगाना तक विस्तारित है और सीजनल ट्रक जो है पंजाब से लेकर बिहार तक विस्तारित है। इस प्रभाव से प्रदेश में आज मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात, तेज हवा और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 4 डिग्री से लेकर 6 डिग्री अधिक है। इस प्रभाव से आज से लेकर आगामी 3 दिन तक रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों के लिए ग्रीष्म लहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
0: मौसम विभाग के अनुसार 23 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ सकता है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार कल 22 से 26 जून तक सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन करेगी। इसके तहत 1000 श्रद्धालुओं को गुजरात स्थित सोमनाथ धाम की यात्रा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कोरिया जिले के ग्राम नौगई में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 16 जून की रात आपसी रंजिश के चलते चारपहिया वाहन में आग लगाने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी से प्राप्त रकम के लेन देन में उपयोग किए गए म्यूल अकाउंट मामले में 1 आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खाते से 14 लाख रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन देन पाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनः परीक्षा आयोजित की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज रायपुर जिले के अभनपुर में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को दिया प्रशिक्षण। और मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक मध्य छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग संभाग में लू के लिए जारी किया येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
5: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जा रहे क्रिकेट मैच की आप जो कमेंट्री आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
6: और भागवत सिंह रावत जो हमें बताते रहेंगे क्या क्या स्कोर इस मैच में बन रहा है। ओवर टू यू कृष्ण कुमार जी।
7: या थैंक यू एंड गुड इवनिंग ऑल लिसनर्स अक्रॉस द कंट्री। A very, very, very important game this in the ICC T20 Women's World Cup. As important as you may probably want it to be, because remember that India and South Africa also played a bilateral recently.

याद दिला दी कि आप आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम मैनचेस्टर में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल हमारे मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। एफएम बैंड और न्यूज ऑन एयर ऐप पर प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आप सुन सकेंगे रात्रि 8:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का प्रसारण होगा रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर हम आपके लिए अनुप्रसारित करेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम मैनचेस्टर में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल आप हमारे मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकते हैं।

आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। एफएम बैंड और न्यूज ऑन एयर ऐप पर प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में ये गजल। शायर हैं प्रदीप राव, संगीत है भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में आप सुनिए तलत अजीज की आवाज में ये गजल। शायर हैं सईद सहीदी, धुन है जगजीत सिंह का।

कार्यक्रम रजनीगंधा के अंत में सुनिए भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में ये गज़ल, शायर है इब्राहिम अश्क़।

भूपेंद्र सिंह की गाई हुई इसी गजल के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा आज यहीं तक। एफएम बैंड और न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

कार्यक्रम सुनवैया जम्मू किसान भाई मल्ला बिरजू भैया के राम राम। किसान भाई हो, ऐसा नाशा है कि रोरे मन स्वस्थ हो, बढ़ियन हो, लेकिन अभी समय जो है हमार खेती बाड़ी कर चलता है, विशेषकर जो हमार खरीफ फसल है ओकर किस तैयारी में हमार जो किसान भाई लगिना है, तो भाई ओकर तैयारी जो है बढ़ियन करना जरूरी है। काहे कि भाई हमार साल भर कर जो फसल है एकरे पर निर्भर रथे, और हमार जो उत्पादन है हमार आय भी विशेष रूप से एकरे ऊपर निर्भर रथे। किसान भाइयों, खेती बाड़ी तो भाई जरूरी है, क्योंकि एकर से जीवन हमर जुड़ी सा है, लेकिन एगोट और चीज़ है जेकर से हमर

जीवन जुड़ी सा है और भाई जिला मन गर्बेज करथन और जीवन तो भाई देखी पानियों से जुड़ी सा है, हवा से जुड़ी सा है, मिट्टी से जुड़ी सा है। तो जेकर हमन बात करथन कि भाई पर्यावरण से हमार जीवन जुड़ी सा है और जब हम पर्यावरण के बात करथन तो भाई जमो जात कर बात करथन कि भाई कौन कस जो है हमन अपन पर्यावरण ला बढ़िया रख सकथन जो हमार जीवन भर काम आए और हमारा आए वाला जो लैका छुआ है उमनो भर काम आए। किसान भाई अभी बढ़िया समय है कि हमन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगा सकथन और जब हमन पेड़ पौधा की बात करथन तो हमें भाई रिकिम रिकिम कर पेड़ पौधा हैं चाहे अपन बाड़ी में लगाना है, अपन सामुदायिक ज़मीन में लगाना है, ग्राम पंचायत कर जो जगह है वो में लगाना है या जो कहली सामुदायिक तालाब है ओकर ऊपरे लगाना है मेड़ के ऊपरे। तो ऐसा में बढ़िया समय है कि हमारे किसान भाई जो है तैयारी कर लें कि भाई कहाँ पे कौन सा पेड़ लगाना है वो हिसाब से जो है किस्म कर भी चयन कर लें कि भाई का लगाना है, फलदार लगाना है, इमारती लगाना है कि बांस लगाना है या फिर छोटा झाड़ीदार जो पौधा है नींबू है सुबबूल है ओके लगाना है। तो किसान भाई ये ला तय कर लें। अब रईस भाई कि भाई अगर तैयारी कैसे करना है तो भाई अभी से किसान भाई जो हैं जैसन वृक्ष है वो हिसाब से जो है गड्ढा खोद के और विशेषकर बढ़िया यदि फलदार बागान लगाना चाहते हैं या फलदार पौधा लगाना चाहते हैं तो भाई आधा मीटर कम से कम लंबाई गहराई चौड़ाई कर पौधा जो गड्ढा ला खोद के बढ़िया उनमें सड़ल खातू मिला दें और उनमें जो है कहली कि दीमक मारे वाला दावा ला भी डाल दें। तेकर से कह रही कि भाई हमारा गड्ढा तैयार रही और जैसे ही पानी पड़ी वो पौधा ला हम लगा दें। तो एकर से कहा हुई कि भाई देखिए हमर जो हम बात करथन उठियाथन राउन मन से कि हमर जो पर्यावरण है हमारे क्षेत्र में पेड़ कर कमी होता है, जंगल कर कमी होता है, हमर जो है कह ली कि भाई पर्यावरण या कह ली कि मौसम जो है बिगड़ता है, जलवायु जो है बिगड़ता है तो के संभारे बर बड़ा जरूरी है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और किसान भाई यदि मैं बाड़ी की बात करूँ तो अपन बाड़ी में भी हमन कई तरह के फलदार पौधे लगा सकत हन, बांस लगा सकत हन जगर से कि जंगल पे भी भार कम पढ़ी। तो एक तैयारी करे कर बढ़िया समय है किसान भाई। और बात करी फलदार पौधा के यदि एक एकड़ में दो एकड़ में अपन फलदार बागान लगाना चाहते हैं तो किसान भाई ओकर भी तैयारी कर सकते हैं और जो है ओकर से हमार पर्यावरण सुधर भी करी और साथ में हमार आय कर एगोट निश्चित साधन बन जाते हैं। और जब हम पर्यावरण के बात करते हैं तो भाई उसमें पानी आए, हवा आए, मिट्टी आए और जब हम पौधा लगाते हैं तो मिट्टी के भी सुरक्षा हो जाते, पानी के भी सुरक्षा हो जाते और हवा कर भी सुरक्षा हो जाते। जब हम हवा के बात करते हैं तो भाई हवा शुद्ध रही तो हमन स्वस्थ रहो। अब पेड़ पौधा जो है देखिए हमन जानथन कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ला सोख के दे हमला ऑक्सीजन देते हैं, जे सांस ला हमन ले थी ला ऑक्सीजन कहते हैं। और ये ऑक्सीजन जो है हमला यदि बढ़िया ऑक्सीजन है, शुद्ध हवा है तो हमला बढ़िया जो है बढ़िया जीवन देते हैं, हमन स्वस्थ रहन। तो कहे कर मतलब है कि जो ये पेड़ पौधा है हमार कई तरह से हमार पर्यावरण के संभाल देते हैं। तो जो किसान भाई यदि ये निश्चित करता है कि भाई ये दार जो है हमला फलदार बागान फलदार पौधा लगाना है तो ओकर किस्म जो है अपन जो पर्यावरण है कहे कर मतलब है कि यहाँ कर जो जलवायु है वो हिसाब से जो उद्यान विभाग कर जो अधिकारी मना है उन मन से गोट बात कर सकता है कि भाई कौन सा फलदार बागान जो है क्षेत्र में लगाना बढ़िया रही। तो किसान भाई जो है अभी से ओकर जो है तैयारी कर लें और कहाँ से पौधा मंगाना है वो पौधा यदि स्थानीय तौर पे उपलब्ध होता है तो बढ़िया बात है, बढ़िया उद्यान विभाग से संपर्क कर सकता है, कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क कर सकता है और जो हमारे कहली फॉरेस्ट विभाग या जंगल विभाग है वहाँ से भी हम संपर्क करके पौधा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई हम कभी कभी हम बात करते हैं कि भाई जैविक खेती जो है के तरफ जाना जरूरी है कबर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रासायनिक दवा है रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं जेकर से हमन के कई तरह के समस्या के सामना करना पड़ता है। मिट्टी का स्वास्थ्य तो खराब होते है भाई, उसमें जो उत्पादन होता है ओकर से हमार स्वास्थ्य खराब होता है भाई, हवा भी खराब होता है और जो कह ली कि भाई जो चिड़िया चुरुंगा हैं, जो मित्र कीटियाँ हैं, जो मित्र पक्षियाँ हैं ओहू मन कर संख्या जो है घटत है। तो एक बारे में तनिक सोचना पड़ी तो हम जैविक दवा के बारे में भी बात कर सकते हैं। मैं जैविक दवा के बारे में एक मैं गोठियाता हूँ कि भाई जैसे नीम कर पौधा है या नीम कर पेड़ है
एक ही भी लगाना बड़ा जरूरी है। कब कि भाई नीम

जो पेड़ रथे ना, तो ओकर पताई से कह ली कि भाई ओकर बीज से जो है कई तरह कर दवा बनते। तो अपन गांव में, अपन क्षेत्र में, अपन बाड़ी में नीम कर पौधा जरूर लगाएं। काबर कि भाई देखिए बढ़िया ऑक्सीजन भी देते, बढ़िया दवा बनाए कर काम भी आते। तो नीम कर पौधा जरूर लगाएं। एक बार रोरेमन फॉरेस्ट या जंगल विभाग से संपर्क कर सकत हन और अपन बाड़ी में एक दो नीम कर पौधा जरूर लगाई। तो एक से हमारे जो जैविक दवा कर हमन बात करते हैं कि भाई कौन का जैविक दवा बनाई, तो उसमें भी सहायता करी, साथ में हमारे पर्यावरण के संरक्षण में भी सहायता करी। तो किसान भाई मैं कहते रहें कि भाई जो ज़्यादा हमन कहली रासायनिक दवा और रासायनिक खातु कर जो प्रयोग करत हन, एक से हमार माटी तो खराब होते चाहे और स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो भाई जरूरी है कि भाई हमन थोड़ा सा रासायनिक खातु कर मात्रा ला कम करी और तनिक ओकर जगह जो कहली जो जैविक खातुआ है, खासकर जो गोबर खातुआ है, कंपोस्ट खातुआ है, केचुआ खातुआ है, हरा खातुआ है, ओकर प्रयोग हमन ज़्यादा से ज़्यादा करी। और देखिए हरा खातुआ भी तो बढ़िया समय है कि हमारे जो किसान भाई चाहे लोबिया हो गई, चाहे कोनो भी दालिए किस्म के जो पौधा हैं या कहली फसल आएँ ओके बुन के, या फिर रोरेमन चरोटा जिला कहते हैं हुला बुन के, यदि तनिक लंबा होता है तोला खेते में जोत दे तो बढ़िया हरियर खाद बनते। तो कहकर मतलब अब ऐसा उपाय अपनाना है जिसमें कि हमार खर्चा भी कम होए और इनमें खर्चा भी देखिए उतना ज़्यादा नहीं है। हरा खाद कर बात करी या फिर जो किसान भाई हैं केचुआ खाद जो बनाता है, तो भाई अपन खेती पर तो हम बनाई ही सकत हन, भले बेचे कर बात नहीं करी। तो कहकर मतलब है कि भाई धीरे धीरे जो है हमार अपन खेत ला सुधारना पड़ी। और देखिए अभी जो है हमारे सरकार के तरफ से जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनकर तरफ से हमारे जो प्रधानमंत्री है भाई ये आह्वान कर जैसे कि खेत सुरक्षा अभियान भी वो करो वजह से चलाते हैं कि भाई खेत कर सुरक्षा के बारे में सोचना है। हमने कह रहे जो रासायनिक खादु है ओकर जो है मात्रा थोड़ा कम करना है, काबर कि ओकर से कई तरह के जो है खराब असर जो है हमारे माटी पर पड़त है। ओकर से जो उत्पादन होता है भाई उत्पादन जैसन खेत रही वैसन उत्पादन हुई, तो ओकर फिर जो असर जो है हमारे स्वास्थ्य पे भी पड़ता है, हमारे पर्यावरण पे भी पड़ता है। तो एकर बारे में भी हमला सोचना जरूरी है कि भाई कौन कौन जो है हमन अपन मिट्टी कर स्वास्थ्य ला सुधार के और बढ़िया उत्पादन ले सकत हन। और किसान भाई एक बात और कहूँ कि भाई हमन हाइब्रिड के तरफ तो ज़्यादा जात हन, भाई उत्पादन तो बढ़िया ना है और सब जन भाई देखते हैं कि के में बढ़िया फायदा भेटात है, लेकिन साथ में हमला अपन स्वास्थ्य भी देखना है, अपन माटी का स्वास्थ्य भी देखना है, अपन पर्यावरण कर भी बात करना है। तो हम इनके देसी किस्म के तरफ भी थोड़ा सा जाना चाहिए क्योंकि इनमें रोग राय भी कम लगते और खातू दवाई भी कम लगते। तो जो धान के देसी किस्म है ओकर बारे में भी सोचना जरूरी है, काबर कि हमारे धान कर जो देसी किस्म है भाई देखिए हमारे पुरखा ले चलत आता है और कि यदि हमन बचा के रखबो तो हमन पर एगो बढ़ियन कह ली कि एगो बढ़ियन धन साबित हो ही। काबर कि भाई देखिए जो हाइब्रिड हमन करत हन और हर साल हमला खरीदना पड़ते, तो भाई ओहू में कहली पैसा लागते यानी लागत बढ़ता है और रोग राय भी बढ़ता है और माटी भी खराब होता है। तो हम उनके थोड़ा सा अपन जो देसी किस्म है वो के भी बचा के रखना जरूरी है। और देसी किस्म के बात करी तो देखिए कई तरह के जो बढ़िया किस्म है हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनकर तरफ से भी कई तरह के जो बढ़िया देसी उत्पादन देह वाला किस्म हैं वो जो है निकालल की से, तो ओला भी हमन प्रयोग कर सकत हन अपन बीज के रूप में। तो किसान भाइयों पर्यावरण जो है मैं कहता हूँ कि भाई हम सब जन अपन घर बाड़ी में तो पेड़ लगावे करी, साथ में यदि जो सामूहिक जगह है या सामुदायिक स्थान है वहाँ भी लगाए बर सोची ताकि हमन अपन गाँव ला हरा भरा कर सकी, अपन क्षेत्र ला हरा भरा कर सकी, ताकि हमारे क्षेत्र का जो पर्यावरण है, पानी का जो स्तर है, बढ़िया शुद्ध हवा कर जो बात है वह बनल रहे। तो एक बारे में भी हमला सब झलना सोचना पड़ी क्या कि ये सबकर जीवन से जुड़ल बात है। तो कहकर मतलब है कि भाई हमन यदि सामुदायिक रूप से भी यदि तय करत हन कि भाई कौन का जो है अपन गांव ला हरा भरा करना है, बढ़िया अपन जंगल ला करना है, काबर कि एक से जीवन जुड़ी सा है। तो किशन भाई देखिए आज मैं पर्यावरण के गोट बात तो करत हूँ, लेकिन भाई स्वस्थ शरीर रहे बर और बढ़िया मन जो है शांत रहे और हमन हमेशा स्वस्थ रहे आज एगो विशेष दिन है। और देखिए आज है 21 जून और ये दिन जो है हमन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाथन। अब योग दिवस तो भाई हमारे जो किसान भाई हैं और बहुत सारा किसान भाई योग करबो करते
और देखिए योग करेगा फायदा यह है।

कि भाई हमन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और कह ली कि भाई आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहन, और हमर जो कह ली कि स्वास्थ्य कर बीच कर जो संतुलन है, मन कर संतुलन है, बने रहते। और योग कर बात करी तो भाई देखिए हमर ये जो योग है बहुत प्राचीन समय से हमारे देश में चलल आता है, और जैसे भी आज भी हमर जो कह ली कि आज हम मनाथन योगा दिवस में भी कहते हैं कि भाई योगा करे से कई तरह कर जो है बीमारी भी दूर होते और हमर शरीर भी स्वस्थ रहते। कई तरह के बीमारी से हमन बचथन, तो भाई देखिए बीमारी से बचे पर यदि हमन दवा खातन तो और तो भाई कह ली कि अब बीमार पड़िए गए तो दवा खाना ही पड़ी, लेकिन हमन के दवा जन खाना पड़े एकर बर जो है योग बड़ा जरूरी है जेकर से हमन स्वस्थ रहन। और देखिए जो विशेषज्ञ मन आए कहते हैं कि भाई एकर से हमारे जो शरीर में लचीलापन बने रहते, हमारे जो मांसपेशी मजबूत रहते, शरीर का संतुलन बने रहते, और यहू कहल जाते कि भाई तनाव में जो कमी है आते हमन जो प्राणायाम या ध्यान करते हैं एकर से मन शांत होते, और जब मन शांत होते तो देखिए कई तरह कर जो है काम करे कर मन भी करते। कहते हैं कि भाई यदि हमन प्राणायाम या ध्यान करत हन तो कई तरह का जो हार्मोन पैदा होते ओला देखिए योग जो है नियंत्रित करते। हमर जो हृदय कर बात करी या सांस लेकर जो प्रणाली या है या फिर जो अंग है ओला भी नियंत्रित या स्वस्थ करे में योग कर बहुत बड़ा योगदान है। एकर से हमर कह ली कि भाई जो हृदय है और फेफड़ा कर कार्य क्षमता बढ़ते और हमर जो स्वास्थ्य सुधार करे में बेहतर करे में बढ़िया काम करते। वैज्ञानिक मनेहू डॉक्टर मनेहू कहते हैं कि भाई हमारे जो नर्वस सिस्टम है ओके कई तरह से फ़ायदा पहुँचते, मतलब बढ़िया नींद आते, और जब बढ़िया नींद आते तो आदमी मन बढ़िया स्वस्थ रहते। तो कहकर मतलब है कि भाई ये जो योग है हमारे पर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही उपयोगी है। और आजकल देखते हैं कि मोटापा भी धीरे धीरे बढ़ते चाहे, तो भाई देखिए मोटापा के नियंत्रण करे पर भी बड़ा बढ़िया चीज़ है कि योग करके हमन अपन शरीर ला स्वस्थ रख सकत हन, अपन वजन ला नियंत्रित कर सकत हन। तो योग के कई तरह के फायदा है, और आज जो हमन कल 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाथन तो पूरा दुनिया में योग करल जाता है, और योग तो भाई हर साल हर दिन हमन करथन, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो भारत से निकली सा है पूरा दुनिया में के मनाते हैं, एक महत्व ला समझता है कि भाई योग जो है हमारे शरीर पर हमर जीवन पर काहे बर जरूरी है। तो एक महत्व जो है दिनों दिन बढ़ता है और हमन के भी करना जरूरी है, काहे कि भाई यदि हमन बात करथन आगू बढ़े कर तो आगू तभी बढ़बो जब हमन स्वस्थ रहो, और स्वस्थ रहे पर योग बड़ा जरूरी है। तो किशन भाई देखिए गोट बात करबो, लेकिन मैं कहते रहें कुछ मनोरंजन कर लेते हैं, तो देखिए आइए गोट गीत सुनत हन जे लगाते हैं लक्ष्मण मस्तूरिया।

किशन भाई अजय ये गीतला सुनत रहें जे लगात रहें लक्ष्मण मस्तूरिया। किशन भाई एगो बड़ा कहली कि उपयोगी अभियान चलता है खेत बचाओ अभियान, और ये अभियान ला देखिए भारत सरकार और कृषि मंत्रालय जो है इला चलाता है, और एक जो खेत बचाओ अभियान के उद्देश्य है ये है कि भाई जो हमार मिट्टी है ओकर उपजाऊ क्षमता ला बचाए बर और टिकाऊ कृषि ला बढ़ाए देहे बर ये जो कहली एगो महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी अभियान है चलाल जात है। और एक जो मुख्य कहली उद्देश्य आए यही है कि भाई जो अमन अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक कर प्रयोग करत हन तो ओकर से हमन के अपन जमीन ला बचाना है, और हमन के प्राकृतिक खेती जैविक जो खेती है ओकर तरफ बढ़ना है, और कहली कि वैज्ञानिक तरीका अपनाए के अपन उत्पादन ला भी बढ़ियन करना है, लागत ला भी घटाना है, अपन मिट्टी के स्वास्थ्य ला भी देखना है। तो ये जो हमार

0: लिए कि भाई खेत बचाओ अभियान है। एकर मुख्य उद्देश्य पहला तो यही है कि हमारे जो माटी है ओकर जो सेहत है बढ़ियन रहे, बढ़ियन सुधरे और बंजर होए से बचे। किसान भाई वो बात में यहू चाहे कि भाई हम जो रासायनिक खातु जो है बगैर अपन माटी कर जांच कराए और कह ली कि भाई इसने डालत रहन, तो ओहू में बात करल गई से कि भाई ये अभियान के तहत हमारे जो किसान भाई अपन मिट्टी के जांच कराएं, वो हिसाब से समझें कि भाई कौन कस जो है हमारे माटी में कौन सा तत्व के कमी है, कौन सा खातु डालना बढ़ियन रही, तो एकर से हमारे लागत भी कम हुई, हमारे खेत कर स्थिति भी सुधरी और कह ली कि हमारे जो पर्यावरण है वहू बढ़ियन रही। और ये अभियान के तहत जो है भी सरकार का प्रयास है कि किसान भाई मल्ला जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, मिट्टी जांच कराए कर बात है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा योजना है, ये तरह की योजना के बारे में भी जानकारी दिल जाए। और ये अभियान में देखिए हमारे जो कहली की कृषि विश्वविद्यालय के जो विशेषज्ञ हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, वो गांव-गांव जाके जो है किसान मल्ला बताते हैं कि भाई कौन कौन जो है हमन संतुलित खाद अपन खेत में डाली और कौन सा वैज्ञानिक विधि अपनाई जेकर से जो है हमारे माटी भी बढ़ियन रहे, हमारे लागत भी कम हो और हमारे आय भी बढ़ियन बढ़े। और ये योजना के दौरान जो है ये भी किसान भाई मल्ला यू बर जागरूक करल जाता है कि भाई जो नकली बीज है, जो नकली दवा है, नकली खाद है, ओकर भी पहचान रखें और किसान मल्ला जागरूक करल जाता है कि भाई कौन तरीका से जो है अपन सामान ला खरीदें और कैसे जागरूक रहें। तो और जगह जगह पे देखी चौपाल कहकर मतलब है कि भाई संगोष्ठी कर भी आयोजन करल जाता है, किसान मन से गोट बात करल जाता है कि भाई कौन कस खेती कराता है, कौन कस खेती करना चाहते हैं, कैसे अपन इस समय में अपन मिट्टी ला सुरक्षित रख के कैसे जो है बढ़िया उत्पादन ले सकें। तो ये जो बात है हमारे बड़े जरूरी भी है, आए वाला समय खातिर भी जरूरी है। तो कहले कि जो खेत बचाओ अभियान है ये बड़ा जरूरी है हमर बर भी और कहले हमर माटी बर भी, हमर पर्यावरण बर भी। तो किसान भाई देखिए चर्चा तो और करबो, लेकिन मैं कह रहे हैं कि आज हमर कार्यक्रम है हमर किसान में, आज कर जो हमर किसान है राम भजन सिंह जी जो गांव भकुरा कर रवैया हैं और कैसे खेती करते हैं, कैसे अपन रासायनिक उर्वरक के कम करता है और कैसे जैविक खेती के करे में उनकर का सोचा है, यही विषय में उनकर से गोट बात हुई से। तो आइए गोट बात ला सुनल जाए।
1: गोट बात कर रहे थे, गोट किसान है, प्रगतिशील किसान, और कैसे खेती की तैयारी करते हैं, विशेषकर जो खरीफ फसल है ऊपर तैयारी कैसे कर रहे हैं, तो अपन नाम ला बता देते हैं, गांव ला बता देते हैं।
2: मोर नाम राम भजन है, राम भजन सिंह, गांव है भोकुरा।
1: अच्छा, तो अभी राम भजन जी खेत की तैयारी कैसे कर रहे?
2: अब खेत की तैयारी तो मोर अभी धाने का फसल है, धान और मक्का।
1: जोताई उताई होगी?
2: हाँ, जोताई होगी से।
1: जोताई होगी से, तो अभी हमें बेसल डोज मारब कि कुछ गोबर खातू डाले ही?
2: नहीं, गोबर खातू भी थोड़ा बहुत डाले ही, थोड़ा बहुत तो भी डालबो,
1: लेकिन जितना गोबर खातू की जरूरत है उतना हम नहीं डाल पाते।
2: हाँ, जितना गोबर खाद उतना जरूरत नहीं डाल पाना।
1: अच्छा अच्छा, राम भजन जी अभी सरकार की तरफ से गोट अभियान चला था खेत बचाओ अभियान। खेत बचाओ अभियान में इतना है कि भाई देखिए, हाँ, जो सरकार है वो बोलता है कि भाई जो हम ज्यादा रासायनिक खातू और रासायनिक दवा का प्रयोग करा था नेचर से हमारे खातू खेत भी बिगड़ता है और हमारे स्वास्थ्य भी बिगड़ा। सरकार चाहते है कि भाई थोड़ा सा हमन जो रासायनिक खातू है प्रयोग कम करी,
2: खातू के बल से वो क्या बोलते हैं उपज होल। किसान कर है लोकल धान, जो लोकल धान आज के डेट में अगर लोकल धान खेत में डाल दिया बिना खातू करे वो धान होने नहीं। अब पहले कार्य बिना खातू का धान हो जाते हैं।
1: पहले कैसे हो जाते हैं?
2: काबर की हम भाई छोटे से बचपन से लेके खेती करत करत आते, तो हम खातू तो नहीं करती, आज भी बहुत कम नहीं कम मात्रा में करती, काबर की खाए में भी हमन घर में भी खाए पर जरूरत रहे, थोड़ा हमन मीडियम में डालते,
1: उतना ज्यादा नहीं डालते।
2: हाँ, उतना ज्यादा नहीं डालते। अच्छा। जो चीज में है जैसे कि जितना खाए के लिए है उसमें कम खातू डालती, और जो बेचने के लिए है उसमें थोड़ा सा ज्यादा खातू डालते।
1: तो अपन खाए पर अलग उगाता?
2: हाँ, अपन खाए पर अलग उगाते।
1: तो मतलब पतला धान?
2: हाँ, पतला भी रहे मोटा भी रहे।
1: देसी धान उगाते किसान मन?
2: नहीं, बराबर गाँव में मुश्किल से 4-5 आदमी लगाए देसी धान,
1: लेकिन हम देखते हैं कि भाई जो हम हाइब्रिड लगाते हैं उसे हमारे जमीन भी बिगड़ता है, हमारे पर्यावरण भी बिगड़ता है, तो ऐसे में किसान भाई मन का कर।
2: अब

0: का कर सकत है भी, अब वही तो करही, अब पहले जैसा गरु बैल फिर पालही,
1: अच्छा
0: फिर पालही और फिर गोबर खाद करही, फिर खेत में डालही, फिर धान उपज होगी।
1: अच्छा, समस्या यहाँ पे पशुपालन की है।
0: हाँ, पहले वहाँ बहुत रहीन, गाय भी रहीन।
1: अभी क्या समस्या है पशुपालन में?
0: अभी हर जगह सब खेती, कोई मक्का डाल दें, कोई टमाटर डाल दें, कोई बैंगन डाल दें, मतलब हर जगह चराने के लिए जगह नहीं बचता है।
1: तो ओकरे से पशुपालन कम हो गए थे की?
0: हाँ, ओकरे से पशुपालन कम हो गए थे।
1: अच्छा, पहले जगह बहुत रहत रही।
0: हाँ, पहले जगह बहुत रहत रही।
1: लेकिन ये बात तो हम रामजन जी कर सकते हैं भाई, ठीक है कि गोबर थोड़ा कम मिलत।
0: हाँ,
1: लेकिन जो कह ली जो कचरा से खाद बनते है,
0: हाँ
1: जो हरा खाद है, ओकर तो उपयोग कर सकत हन।
0: हाँ, ओकर कर सकत हन। हाँ,
1: तो बढ़िया खेती करत है उमन तो सोचे तो ही ना भाई अपन खेती के बारे में, कि अपन खेती ला मन कैसे जो खेत सुरक्षा कर अभियान चलता है ना,
0: हाँ,
1: बारे में सोचिन खेती भाई। सरकार इतना प्रयास करत है कि हम जो रासायनिक दवा कर प्रयोग से बच सकी, रासायनिक खातों का थोड़ा कम प्रयोग करी तो। लेकिन जो रासायनिक दवा है बोला तो हम जैसे अब टमाटर मिर्चा लगाता ना और जाते दुकान है किड़वा लगी से लाके मार देते जहर ला।
0: हाँ, जहर
1: तो जहर में तो भाई देखी जो मिर्चा और भाटा है वो प्रभावित होते हैं और मिट्टी भी प्रभावित होता है।
0: हाँ,
1: और जो मित्र कीट है केंचुआ मेंढक मधुमक्खी जितना है सब तो सिराए गई लगता है कि
0: जैसे कि बहुत कोई छिड़काव कर देते है ना वो दवा, तो ओकरे चलते पूरा खत्म हो जाते।
1: तो जो जैविक दवा है जैसे करंज हो गई, नीम हो गई, जेकर पताई की दवा बने, फिर
0: हाँ,
1: जो है मान ली की गौमूत्र और दही और गुड़ मिला के सब जो जीवामृत और ब्रह्मास्त्र जो जैविक दवा है ओकर हमन प्रयोग करी तो बढ़िया नहीं रही?
0: तो देखा एमें का है, हर किसान ये बनाना नहीं चाहे।
1: हाँ,
0: आज कमा ले थी, आज कमा चल जाती, दवा लेते आप सुबेरे फिर छिड़काव कर दे, फिर सुबह काम करे चले जाब।
1: अच्छा, ये सोचा,
0: ये सोच आदमी मन कर है ना, उतना बनाए करे हम लोग कहाँ कर ही मन। हाँ,
1: माने समय कम हो जिसे।
0: हाँ, समय कम होगी
1: भाई। ठीक है कि खेती के साथ दूसर व्यवसाय दूसर काम से भी जोड़ल जाए जगह से पैसा है, लेकिन
0: हाँ,
1: जो खेत सुरक्षा अभियान जो है,
0: हाँ,
1: जो सरकार चाहते है कि भाई भाई खेत कर बात ना सुनना पड़ी और तो बोले नहीं माटी है।
0: हाँ,
1: तो कब सुनोगे?
0: हाँ, वो तो जब आ जाए तब ये मन के पता चली ना।
1: आज नहीं पता चलत
0: है, अभी कमाते हैं खाते हैं।
1: जो खेती पे निर्भर है वो तो खेत के बारे में सोची।
0: हाँ, वो तो सोची, अब हर कोई सोची, ये नहीं है कि नहीं सोची, हर कोई सोची। अब पहले मही रहन, मही हमी मन रहन, ऐसा एक दिन में रही कि दूसर जन से चावल दाल मांग के खात रहन। अब आज के दिन में वही हमारे जगह जब दारू मुहा बंद कर देन, ज्यादा दिन के नहीं है, 8-10 साल हो गए। 8-10 साल में 3 ठो गाड़ी हो गई, ऊपर से घर भी बना ले हैं, 2 पैसा रखे भी है
1: भाई। उन्नति करना बढ़िया बात है।
0: हाँ है, लेकिन मोर जैसा 2-4 गुआ हो जाए, अब एक जन का सोच में ना नहीं ना हो रुपया कोई भी चीज है।
1: ये बात ना कैसे समझाना पड़ी गांव वाला मन की जरूरत के हिसाब अपन हिसाब से कर जाते
0: ये समझाना।
1: राम भजन जी अभी मतलब मकई लगाए के तैयारी है और धान?
0: हाँ, मकई और धान,
1: तो ये तो दोनों हाइब्रिड होगी।
0: हाँ, हाइब्रिड होगी।
1: तो अभी बीजा खरीद ले?
0: हाँ, बीजा तो खरीद ले हैं।
1: लेकिन अब बीजा तो देखिए, अब बीजा के ऊपर तो दूसरे ऊपर निर्भर हो गए, और देसी रहती तो दूसरे के ऊपर तो निर्भर नहीं ना रहते हैं। अभी मतलब बीजा खरीद ले हैं और जुताई भी होगी।
0: हाँ, जोताई भी होगी से बीजा
1: दुकान से बीजा लाते बढ़िया ना रहते।
0: अब देखा मार्केट में कभी कभी गलत भी बीजा मिल जाए, कभी कभी सही भी बीजा मिल जाए, तो एक प्रकार कर ये है कि एक बीजा नहीं खरीदते, थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके खरीद ले रहे।
1: जैसे बीज के उपचारित करतन गा?
0: नहीं तो कर,
1: तो बीज उपचार तो बड़ा जरूरी है, 2 रुपया 5 रुपया दवा में।
0: हाँ,
1: बीज उपचार करे से भाई लेकिन रोग राई नहीं लगे, जगह जगह पानी की व्यवस्था मन थोड़ा कर देने का।
0: अभी हमारे एरिया में तो नहीं करी ने थोड़ा।
1: अच्छा, अब मकई बुनाई चालू होगी से की?
0: हाँ, ये लोकल मकई चालू होगी से।
1: तो लोकल ला पहले बुनते?
0: लोकल हर का हो जाए कि बिना खाद दवाई कर हो जाए लोग।
1: हाइब्रिड में खाद दवाई डालना?
0: हाइब्रिड में खाद दवाई डालना पड़ेगा।
1: धन्यवाद।

0: पड़ा जाए,
1: कोई डर नहीं।
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान भाइयों, आज ये संदेश मल्ला सुनत रहन। किसान भाई देखिए, कल यानी 20 जून के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो 23वां किस्त है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकर द्वारा जारी करल गिस और ए धार जो है एक कहली कि भाई 9,44,00,000 कहली लाख जो हमारे जो किसान भाई हैं, पात्र जो किसान भाई हैं उनकर बैंक खाता में 2000 रुपया सीधे ट्रांसफ़र करल गई से। और इधर कहली कि भाई जो राशि है 18,880 करोड़ रुपया जो है खाता में सीधा ट्रांसफ़र या हस्तांतरित कर गई से। तो भाई देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं ये योजना कर लाभ उठाता है। जो किसान भाई मन अपन EKYC नहीं कराई हैं वो ज़रूर करा लें। और कहली कि भाई अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे जो किसान भाई हैं PM किसान पोर्टल पर जाके और जानकारी ले सकते हैं। अपन रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर जो है अपन खाता से ज़रूर जोड़ें। और कहली कि भाई यदि कोई समस्या होता है तो अपन पास कर या अपन गांव कर जो सचिव हैं या फिर जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं उनकर से हमारे जो किसान भाई हैं ज़रूर संपर्क करें। तो किसान भाई देखिए, संदेश मल्ला भी सुने ना, और अब मैं कहता हूँ कि एगो गोट गीत सुन लेते हैं तहाँ और एक गोट बात करबो मंडी भाव के और मौसम के। तो आइए एक गोट गीत ला सुनत हैं जो लगाता हैं शेख हुसैन और उनकर संगता मन।

किसान भैया जे गीत ला सुनत रहे जे लगात रहे शेख हुसैन और उनकर संगतावन। किसान भैया थोड़ा मंडी भाव कर बात कर लिया जाए तो देखिए आज जो मंडी में गेहूं कर भाव रहीस वो रहीस 2531 रुपया प्रति क्विंटल, धान रहीस 2371 रुपया प्रति क्विंटल, महुआ जो रहीस देखिए न्यूनतम 3000 और अधिकतम 6000 रुपया रहीस, मकई रहीस 2400 रुपया प्रति क्विंटल, मूँगफली रहीस 5300 रुपया प्रति क्विंटल और महुआ बीज जो है वो रहीस 2800 रुपया प्रति क्विंटल। अब थोड़ा मौसम के भी बात करल जाए तो देखिए आज कल जो अधिकतम तापमान है 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहीस। कल के अनुमानित तापमान के बारे में बात करल जाए तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहकर अनुमान है। कल जो है तनिक बरसात कर भी संभावना है। तो किसान भाइयों आज कर जो कार्यक्रम है अब राउर मन से विदा लेकर समय होगी से, तो राउर मन जब काल फिर भेटाल जाही आज चलल जाए। राम राम।

अभी ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आप ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम मैनचेस्टर में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल हमारे मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकते हैं। और अब सुनिए FM बैंड और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म दामिनी के इस गीत के साथ। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्री रामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत और रोहिणी दले ने, ऋषिकेश दले, जीविका सानिका दले ने, पूनावले पुणे से अजय सोनवनी, करिश्मा अविका और विशाखा सोनवनी ने, चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारीलाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि और आर्यन, रंजीत कुशवाहा और रामानंद कुशवाहा ने, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे, पुष्पाताई नारे ने, सरलाही सोकनाहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा, वंदना कुमारी शर्मा और प्रियंका कुमारी शर्मा ने, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से ने, विराटनगर नेपाल से अरुण चंद्र शर्मा और रेणुका शर्मा ने, छत्तीसगढ़ चुड़ीलाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर मोहम्मद अल्ताफ नीलोफर फातिमा ने, एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अभई सिल्लोड जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घुड़के, वैशाली प्राजक्ता वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश घुड़के ने, आमाखोड़रा रेंगाखार से राजेंद्र सिंह नेताम, देवी सिंह नेताम, दक्षप्रिया महामाया नेताम, गीत सरगम जय सूर्या नेताम ने,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश, आकाशवाणी की अंबिकापुर केंद्र से, और मैं आपके साथ हूं आपकी रेडियो हम सफर जयमाला। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मेरे जीवन साथी का ये गीत। गीतकार हैं मजरू और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है ग्राम धूराबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू ने। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा ने। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवान, उमा राज, दिव्या भारती और बेताब। रेडियो लिसनर क्लब बिहार से वसीम अकरम, बेबी जोई और गुड़िया खातून ने। बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम ने। सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरानी। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिक्रेस्टो, रोजी पर्ल और विलिस डिक्रेस्टो ने। सरगवा उदयपुर से जिला सरगुजा से शंभुदयाल नक्ष सिंह, अश्विनी कंवर एवं सत्यनारायण सिंह ने। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवान ने। दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आप आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम मैनचेस्टर में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल हमारे मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। और अभी हम पेश कर रहे हैं सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश FM बैंड और न्यूज ऑन एयर ऐप पर। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ और सुजाता गोस्वामी के साथ फूल और अंगारे का ये गीत। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल साय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लक्की मरकाम, सीताराम मरकाम, सितंबर मरकाम, अमर मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडेराम राजवाड़े, नूर साय राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, कविता मरकाम और आरती ने। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष शिवान्या, अनु गोस्वामी ने। अमगासी कुन्नी चौक नवापारा लखनपुर सरगुजा से मुनेश राम, शालिनी, रुचिका, अनिका, मनीष, सुचिता, चांदनी और दीपांशु ने। मुंडाटोला डोंडीलोहारा जिला बालो छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम ने। ग्राम पंचायत सिरकोंतगा महादेवपारा पोस्ट लहपेटरा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू बल्लू, धनु, अमित कुमार, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकलराम, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा, नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या, उमेश्वरी, मुन्नीबाई, सोनामती, माया राजवाड़े और सिमरन राजवाड़े ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार ने। अनारकली वज्रांत जगराव से पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव ने। रायगढ़ से रोहित और जयलक्ष्मी ने। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती और अभय गुजराती ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश, आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आंखें का ये गीत। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत है रवि का। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया ने। वणिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने। सरोज चौक से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदीया खान, अफिया और पोत्रा मुस्तबा खान ने। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा और सीता ने। साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर ने। साथ ही रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी ने। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। ग्राम सिंधमा बाजारपारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह ने। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जिया उर रहमान, शेख अता उर रहमान और शेख हबीबुर रहमान ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आकाशवाणी की अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें फरमाइश की है गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूटी, प्रमोद कुमार डूटी और पुष्पेंद्र कुमार डूटी ने। ग्राम पंचायत खोनला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, धुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा ने। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला और ओम कुमार ने। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सूरभि शाह और अश्वनी शाह ने। साथ ही मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु शाहू ने। स्वरूपानंद सरजल जोड़ा पीपल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू ने। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। अंडार नाथगांठ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा ने। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू ने। राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार, संदीप कुमार पांडे, कृष्ण कुमार, चितरंजन यादव, सुनील कुमार, तेज कुमार साहू, रविशंकर राजवाड़े, मनीष कुमार साहू, गंगेश्वरी भास्कर, कविता मांझी, सेवता कुलदीप और सूची कश्यप ने। बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाणे, भारती रंभाणे, वैशाली हर्षल रंभाणे और जानवी रंभाणे ने। उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह ने। नलेश्वरनगर नरवल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला, विशाल, नारायण इंगले, शोपान तांडे ने। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफी

साहब प्रवीण ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम शाबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्षर हरिद्वार उत्तराखंड से, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का ये आखिरी नगमा पेश है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म गोरा और काला से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है

सफ़ीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना और कुश खन्ना ने, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, साहिना सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक ने, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद ने, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने, गांव टोरोवाला जिला नवाशहर

श्वेता भगत, किशु, ताशु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद ने, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने, गांव टोरोवाला जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी और वामी का साथी वाणी थांदी ने, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू, ज्योति ठाकुर, चरौदा बाजार नवापारा अभ्यारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल ने, गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ा राजस्थान से अनूप सिंह नथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार ने, शाहदुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने, ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद शाकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगरांडे, वनीता गंगरांडे और मोहम्मद हसनैन पवार ने, संबलपुर कांकेर से फागूराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने, राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति, ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडेराम राजवाड़े ने, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेन्द्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर पेश है ये कार्यक्रम का आखिरी नगमा।

0: मुकेश और लता मंगेशकर की गाय इसी गीत के साथ कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आज यहीं तक। कार्यक्रम से मुझे यानी अपनी रेडियो साथी जयमाला को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा

0: केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
0: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च

0: स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुँच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की SAM शाखा की शिकायत पर इस महीने के 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई $6 अरब की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से

पांच दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब सुनिए अरमान मलिक की आवाज़ में फिल्म हेट स्टोरी 3 का ये गीत। गीतकार है मनोज मुंतशिर और संगीतकार है बमन।

0: अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत आज यहीं तक। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से, जिसे हम रिले कर रहे हैं।
3: मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं श्री BS भटनागर। तो लीजिए सुनिए नाटक मुक्ति धन।

0: मियां रहमान मियां है।
1: कौन है?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी से नोटिस आया है।
1: रहमान चौपाल की तरफ गए थे, आते ही होंगे।
2: किसे पूछते हैं सरकार?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी का नोटिस है। क्या तुम ही हो रहमान?
2: जी हाँ जमादार साहब, क्या लिखा है इसमें आप ही बता दें।
0: वीर बाहू सिंह जिमीदार साहब ने इजाफा लगान का दावा दायर किया है। तुम्हें पेशी पर पहुंचना है कचहरी में इसी महीने की 25 तारीख को।
2: जी बहुत अच्छा।
0: अभी 3 हफ्ते हैं और हाँ ये लो दस्तखत कर दो। ये लो कलम।
2: जी रहमान बकलम खुद ये लीजिए।
0: खूब, तुम तो पढ़े लिखे मालूम होते हो।
2: बस इतनी ही उर्दू आती है जनाब।
0: अच्छा तो मैं चलता हूँ।
2: कुछ देर सुस्ता लीजिए, शरबत पीकर जाइएगा।
0: नहीं नहीं अभी मैं जल्दी में हूँ, 2-3 और गांव के संबंध भी देने।
2: सलाम जमादार साहब।
0: सलाम।
1: अब तुम वकील करोगे बेटा?
3: और कर ही क्या सकता हूँ अम्मा, इधर फसल खराब हो गई, उधर से ये खर्चान पड़ा है।
1: इतने रुपए कहाँ से लाओगे?
3: कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा अम्मा।
1: बहू से पूछ देखो, शायद उसके पास कुछ रुपए निकल आए।
4: अम्मा मेरे पास 4 चूड़ियाँ थी, वो पिछले साल लगान अदा करने के वक्त गिरवी चली गई। उधार ले लूँ ना कहीं से?
2: उधार किससे ले लूँ, महाजन ज्यादा सूद लेते हैं, जमानत भी लेते हैं।
4: घर में ले देकर ये 2 बैल हैं।
2: बैलों के बगैर किसान क्या खेती करेगा?
4: फिर इस गाय ही को?
1: बहू
3: तुम जानती हो मुझे जान से भी बढ़कर है।
4: तो फिर करोगे क्या?

0: कितना इसके नीचे भैया, कितना दूर इस गाय के नीचे?
1: अरे हाँ हाँ, हम समझ गए, तुम गेहूं बेचना ही नहीं चाहते, यह बेकार हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हो।
2: बेचना न होता तो इसे साथ लिए गांव गांव न घूमता।
0: अरे लाला छोड़ गया को, भगैया मुझे थमा, ये ले 30 रुपए नगद है, ला रसीदे। अरे खड़ा क्या सोचा, ला
2: लाती गौ कुछ ही नहीं लेते हो भाई,
0: पैसे दे रहे हैं।
2: अरे ये
1: अरे क्या, मैं इस गाय के 32 रुपए लगाता हूँ, बोल क्या इरादा है? मैं तुम चुप रहो, मेरे बात है, दे रहा बात ही आप।
3: अरे ऐसी भीड़ लगा रखी है,
1: आइए आइए मुख्तार साहब। सलाम
0: सलाम
3: सलाम
1: हुजूर, ये शख्स अपनी गाय बेचना चाहता है, मैंने 32 रुपए दाम लगाया है, लेकिन ये हामी नहीं भरता।
0: हुजूर 34 तो मैं दे दूं, ये बेचने वाला तो बने।
3: गाय तो तुम्हारी मोहिनी रूप है।
0: हुजूर ये देखिए, गर्दन भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन। हुजूर
3: बाबा बछड़ा भी सुंदर है।
0: हुजूर दाम लगाएं, गाय आपकी।
3: क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो?
0: रहमान हुजूर, पचौली में रहता हूँ, पास के गांव में।
3: दूध देती है?
0: हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए, इतनी सीधी हुजूर की बच्चा भी दूध ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं हुजूर, पर क्या मजाल की सिर भी हिलावे।
3: क्या दाम मांगते हो?
0: 50 रुपए हुजूर।
3: हमें तो 35 का माल जचता है।
0: माल को देखते हुए 50 मैंने ठीक ही मांगे हैं हुजूर, इसके साथ की गाय इधर 50 गांव में नहीं है हुजूर।
3: देखो अब सौदा तय करने की बात करो, हम 35 से ज्यादा नहीं देंगे, बोलो हाँ या नहीं।
0: क्या कहे हुजूर, चलिए गाय आपकी हुई, आपके साथ चलकर आपके घर पहुंचा देता हूँ। चलिए हुजूर।
3: रहमान एक बात बताओ, तुमने 40 में गाय क्यों नहीं दी थी?
0: हुजूर आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपए में भी कभी नहीं बेचता। आप बड़े मौके से आ गए हुजूर, नहीं तो ये सब जबरदस्ती गांव को उनसे छीन ले जाते हुजूर।
3: तुम्हें रुपयों की कोई खास जरूरत नहीं थी?
0: थी सरकार, बड़ी विपत में पड़ गया हूँ, रुपयों की जरूरत नहीं होती तो घर की इस लक्ष्मी को कभी नहीं बेचता हुजूर।
3: लेकिन वो लोग रुपए भी ज्यादा दे रहे थे।
0: इसे अपने हाथों से पाला है हुजूर, कसाईयों के हाथ में कैसे बेच देता।
3: गाय को तुमने प्यार से रखा है वो तो दिखता है।
0: सरकार इसे जितनी खली देंगे ना उतना ही दूध देगी, भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। सरकार
3: तुम फिक्र मत करो, इसकी खिलाई पिलाई में कसर ना होगी।
0: हुजूर एक अर्ज और है।
3: क्या?
0: अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा, इसे मारे पीटे नहीं हुजूर।
3: अरे तुमसे कहा ना है, तुम अब फिकर मत करो। हाँ
0: जी सरकार।
3: बस यही सामने फाटक वाला मकान हमारा है।
0: जी सरकार
3: आ जाओ।
0: जी
3: ये कोठरी इस सामने वाली गऊ का घर है, आ जाओ आ जाओ।
0: जी
3: बस यही बांध दो खूंटे से, हाँ, और देखो इस खूंटे से बछड़े को।
0: जी बाबा बहुत साफ कोठरी है हुजूर, मच्छर कीड़ा भी नहीं है।
3: ये लो रुपए गिन लो।
0: जी 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35 ठीक है सरकार, ठीक है।
2: अच्छा अब चलो, सलाम हुजूर।

0: अजी सुनती हो? कहाँ हो?
1: आई। हाँ कहो।
0: एक नायाब चीज लाया हूँ आज।
1: क्या?
0: गऊ। साक्षात कामधेनु है, कामधेनु।
1: सच?
0: एक मुसलमान बेच रहा था, गाय सादे की है, पर वो बेचारा जरूरतमंद था, 35 में बांध गया।
1: वो कैसे?
0: गऊ उसने कसाईयों के हाथ नहीं बेची।
1: ओ।
0: वो उसे 10-5 ज्यादा दे रहे थे, मेरे हाथों बेची, क्योंकि मैं उसे प्यार से रखूंगा।
1: जानवर की मोहब्बत के पीछे उसने नुकसान उठाना अच्छा समझा, नेक आदमी था।
0: अरे नेकी किसी एक जात या कौम की बपौती थोड़ी होती है।
1: गौ गाय घर में बंधी है ना।
0: आओ चलो दिखाते।
1: चलो।
0: अरे आओ
1: चलो चल कर देखें।
0: बड़ा सजीला और सुंदर है।
1: अच्छा?
0: हाँ
1: चलो।

0: था, नेक आदमी था।
1: अरे नेकी किसी एक जात या कौम की बपौती थोड़ी होती है।
0: गौ गाय घर में बंधी है ना।
1: आओ चलो चलो दिखाते हैं।
0: चलो
1: अरे आओ, आओ, आओ
0: चलो चल कर देखें।
1: घोसला भी बड़ा सजीला और सुंदर है।
0: अच्छा हाँ चलो।
2: सलाम हुजूर।
1: सलाम। तुम ही ने मेरे हाथ गऊ बेची थी ना।
2: जी हाँ हुजूर, जी हाँ।
1: रहमान है ना तुम्हारा नाम।
2: बजा फरमाया हुजूर।
1: कैसे आना हुआ
2: हुजूर? बड़ी जंग के बाद अब हज का रास्ता खुला है। अम्मा बूढ़ी हैं, हज करना चाहती हैं हुजूर। पर मेरे पास उतने रुपए नहीं है सरकार। आप 200 कर्ज दे दें हुजूर तो काम चल जाएगा।
1: रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बात समझ लो।
2: जी हुजूर।
1: मैं वादे पर रुपए लेता हूं, अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो फिर मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा, समझे?
2: हाँ हुजूर, मैं वादे पर लौटा दूंगा हुजूर।
1: अच्छा तो बताओ कब दोगे?
2: सरकार 2 साल की मियाद रख लें हुजूर।
1: ठीक, लेकिन अगर 2 साल में नहीं दोगे तो ब्याज की दर 25 रुपए से 32 रुपया सैकड़ा हो जाएगी।
2: ठीक है सरकार, ठीक है।
1: अलबत्ता तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश नहीं करूंगा।
2: जो चाहे कीजिएगा हुजूर, हुजूर के हाथ में ही तो हूँ।
1: दस्तखत कर सकते हो?
2: हुजूर बस इतनी ही उर्दू आती है।
1: ठीक है, यहाँ पे दस्तखत करो।
2: जी हुजूर। रहमान पकलम खुद। ये लीजिए हुजूर।
1: गवाह तुम नहीं लाए हो, खैर वो मैं करवा दूंगा, ये रुपए लो। 180 हैं।
2: 180?
1: हाँ हाँ 180, कुछ लिखाई के, कुछ नजराने के, कुछ दलाली के, सब मिलाकर 20 रुपए कट गए हैं।
2: आपकी मेहरबानी है सरकार। अच्छा हुजूर चलो। सलाम हुजूर।
1: सलाम।
2: छोड़ मुझे।
3: चल
2: चल।
3: क्या बना आया? अरे सरकार के पैसे ऐसे कोई नहीं हड़प कर सकता, चलता है नहीं? चल
2: चल रहा हूँ भाई, धक्के तो ना दो।
3: अरे अच्छा अच्छा चल।
4: सरकार रहमान को ले आया हूँ।
2: सलाम हुजूर।
1: क्या सलाम हुजूर? 2 साल की मियाद खत्म हो गई, तुम्हें खुद आने की तौफीक ना हुई, बुलवाने पर आए हो। क्या तुम्हारे 2 साल अभी पूरे नहीं हुए?
2: हुजूर
1: लाओ रुपए कहाँ हैं?
2: हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ।
1: अरे गर्दिश में तो सारी दुनिया है, मैं पूछता हूँ रुपए कहाँ हैं? रुपए?
2: अम्मा जब से हज करके आई है हुजूर तभी से बीमार पड़ी हुई है, रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है हुजूर। जब तक जीती हुजूर कुछ सेवा कर लूं, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहता है।
1: बीमारी हारी सबके साथ लगी रहती है रहमान, लेकिन कर्ज का रुपया वादे पर ही लौटाया जाता है।
2: हुजूर सही फरमाते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं, पर अब की कुछ फसल नहीं हुई हुजूर, ऊख पानी बिना सूख गई, सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, ढोने की मोहलत ही नहीं मिली हुजूर, रबी के लिए खेत जोत न सका, परती पड़े हुए हैं हुजूर।
1: इस सबसे हमें सरोकार नहीं है, तुमने वादा खिलाफी की है और ऊपर से उज्र कर रहे हो कि
2: अल्लाह ही जानता है हुजूर किस मुसीबत के दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए की एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। हुजूर साल भर की मोहलत और दे दीजिए, अम्मा अच्छी हुई और मेरे सर की बला टली हुजूर।
1: 1 साल की मियाद बढ़ा दूंगा पर ब्याज 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगा। हाँ
2: जैसी हुजूर की मर्जी, जैसी हुजूर की मर्जी।
1: ठीक, अब तुम जा सकते हो।
2: हुजूर भाई बाप है, अन्नदाता है। सलाम हुजूर।
1: सलाम।

0: बेटा, मेरी वजह से तुम बहुत बर्बाद हो गए।
1: नहीं माँ, बिल्कुल नहीं।
0: खुदा तुम्हें बरकत दे, अब मेरा वक्त आ गया, गम ना करना।
2: अम्मा
0: बेटा,
2: अम्मा आप जी छोटा ना करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी।
0: नहीं नहीं बहू, अब और ज्यादा दिन बोझ नहीं, अब बोझ नहीं बनना चाहती।
1: एक और पानी पी लो अम्मा, जी संभल जाएगा। ये लो अम्मा, पानी पी लो।
0: तुम लोगों ने मेरी बहुत
2: अम्मा,
3: सलाम हुजूर।
4: तुम क्या करने आए हो?
3: क्यों मेरे पीछे पड़े हो?
4: मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है।
3: अच्छा सरकार, मैं फिर आऊंगा। सरकार, मैं फिर आऊंगा।
4: अरे सुनो
3: जी,
4: जाते कहां हो?
3: सरकार,
4: कैसे आए थे? क्या कुछ काम था?
3: नहीं सरकार, यूं सलाम करने आया था हुजूर।
4: फारसी की एक कहावत है रहमान, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो।
3: हुजूर, अम्मा।
4: क्या, तुम्हारी अम्मा?
3: हाँ हुजूर, आज तीसरा दिन है।
4: रो मत, रोने से क्या फायदा है, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ।
3: हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं, पर हिम्मत नहीं पड़ती हुजूर।
4: कहो क्या बात है।
3: हुजूर, अम्मा के दफन कफन का इंतजाम पड़ोसियों से उधार लेकर किया, अब अल्लाह जानता है कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है हुजूर। और काम कुछ ऐसा आन पड़ा है हुजूर कि ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा हुजूर।
4: ऐसा क्या करना चाहते हो?
3: हुजूर, अम्मा की रूह की राहत के लिए फातिहे की जरूरत है, कब्र बनवानी है, बिरादरी का खाना करना है, गरीबों को खैरात देनी है, कुरान की तलावत।
4: जब रुपए हाथ में आए ये काम तब कर लेना।
3: सरकार, बिरादरी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हुजूर। जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद की अदा कर दूंगा हुजूर। इस घड़ी ना ही ना कीजिएगा सरकार, ना ही ना कीजिएगा।
4: तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है
3: हुजूर? सरकार, 200 मिल जाए तो काम चल जाएगा।
4: देखो रहमान, रुपए तो तुम्हें दे देता हूँ
3: सरकार,
4: लेकिन इस बार वादे पर न लौट आए तो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा।
3: अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर।
4: ठीक,
3: कौड़ी कौड़ी।
4: यहाँ दस्तखत करो।
3: आपकी बहुत मेहरबानी है।
4: ये लो कलम।
3: बहुत मेहरबानी है रहमान, बकलम खुद। ये लीजिए हुजूर। अच्छा हुजूर, अब चलो। सलाम हुजूर।
4: सलाम।
3: सलाम।
1: अगले हफ्ते अम्मा को गए हुए 2 बरस हो जाएंगे।
2: अम्मा होती तो इस बार की ऊख देकर कितनी खुश होती।
1: अल्लाह के फजल से ऐसी ऊख लगी है कि हाथ ही भी घुसे तो समा जाए।
2: ए, तुमने कलेजा तोड़कर मेहनत भी तो की है, दिन को दिन और रात को रात ना समझा।
1: अरे मैंने ही क्या, तुम और दोनों लड़के भी तो जी जान से लिपट गए थे।
2: सुनो।
1: हाँ बोलो।
2: अब के लाला का कर्जा चुक जाएगा?
1: अब की ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ में आए, सब के सब ले जाकर लाला दाऊदयाल के कदमों पे रख दूंगा।
2: ऐसे कितने रुपए मिल जाएंगे?

0: लाला ने क्या कहा?
1: कर्ज की मियाद खत्म हो गई थी अम्मा, अपने रुपए तलब कर रहे थे।
0: सख्त सुस्त नहीं कहा?
1: नहीं नहीं अम्मा, लाला खानदानी आदमी है, मेरे कहने पर एक साल की मोहलत और देती है।

0: के।
1: अरे हारे दर्जे 700 तो कहीं नहीं गए। लाला चाहेंगे तो उसमें से 2-4 रुपए निकाल कर दे देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अगले साल और चूनी चोकर खाकर काट लूंगा।
0: लेकिन वादे की मियाद तो अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी ना?
1: अरे उन्हें ऊख की खड़ी फसल के बारे में बताकर गुड़ बिकने तक की मोहलत मांग लूंगा।
0: अल्लाह करे फसल सही सलामत गुड़ साल में आ जाए।
1: हाँ कहावत भी है, खेती की हालत यतीम बच्चे की सी है, पानी और हवा मुआफिक हुए तो अनाज के ढेर लग गए, और अगर इनकी मेहरबानी ना हुई तो लहलहाते खेत बेवफा दोस्त की तरह दगा दे जाते हैं।
0: और फिर ओला पाला सूखा बाढ़ दीमक आंधी से बची तो खलियान में आती
1: और है। खलियान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है।
0: बस ये समझ लो कि इतने दुश्मनों से बची तो फसल,
1: नहीं तो
0: फैसला।

0: Rahman, le e dudhëm të bilegane.
1: La, ka, ka, la.
2: Va, va, Rahman, ab këtë ri u bëri kani uti e bhajja?
0: Bas kisan ki nëhnët ka phal të fësali e bhajja.
2: Ije të sëche, kaka. Mehnët me Rahman ki taraf se kasar nahi hui.
0: Tab dekh hi lo, kaisi jordar ukh hai.
1: Ye lo, tum bhi do char dam laga lo, bhajja.
2: Lao, bhajja, lao.
1: भैया तुम बता सको ये कितने की फसल है?
2: ऊख तो भारी है, बहुत गुड़ निकलेगा। भैया मैं तो समझू हूँ 800 का बिक जाएगा,
1: पर मंडी में नया गुड़ पहुँचते ही भाव गिर जाते हैं, ये मुश्किल है।
2: अरे कम से कम 700 750 तो कहीं नहीं गए।
1: तुम ठीक कहते हो भैया, ठीक कहते हो।
2: आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है रहमान।
1: अगहन है, अब ठंड न पड़ेगी तो कब पड़ेगी? मैंने इसी मारे ऊख के सूखे पत्तों की आग जला ली थी।
0: चिलन ताजा करने के काम भी किया है।
1: तुम ठीक कहते हो काका।
0: अरे क्या कर रहा है रहमान, आपको मत छेड़।
2: अरे अरे हवा से जलता हुआ पत्ता उड़ गया। अरे कम्बख्त ऊख के बीचों बीच गिरा है। अरे सत्यानाशी तूने काहे को आग जलाई ऊख के पास?
3: अरे खेत में लग गई। अरे इसे बुझाओ किसी तरह से। अरे उधर तो ऊख तोड़ने दे।
2: अरे सारे ऊख पर घर में तोड़ने का दे बाहर होगा। आग दही को बढ़ रही है। चलो जल्दी करो, देख जा रहे हो खेत में ऊख को।
3: अरे अजूर
2: रहमान भैया, रहमान भैया सब्र करो, उसकी मर्जी के आगे किसकी चली
0: है? जो होना था सो हो गया, किस बुरी तरह रूप जल रही है।

0: ये तो लाला का चपरासी आ रहा है, अब क्या होगा? खुदा, अब तू ही इस मुसीबत को आसान कर, कहीं आते ही आते गालियां न देने लगे। या मेरे अल्लाह, कहाँ छुप जाऊँ, कहाँ छुप जाऊँ?
1: रुपए लेकर देना नहीं चाहते?
0: नहीं।
1: मियाद कल गुजर गई, जानते हो सरकार को एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी।
0: यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना भैया।
1: अरे ये हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। हाँ
0: देखते हैं जमादार साहब, सारी भूख जल गई, नहीं तो अल्लाह।

0: कौड़ी कौड़ी भी भाग कर देता।
1: मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अब चलो, सरकार बुला रहे हैं।
0: मेरा हाथ छोड़ दो भैया।
1: अरे चल,
0: मुझे मत
1: कर। चल चल चल,
0: मैं खुद चल रहा
1: हूँ। चलता है या मैं? चल चल चल
0: हुजूर, मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए हुजूर।
2: अरे ये क्या करते हो, मेरे पांव मत पकड़ो, छोड़ो।
0: मुझे अब इन्हीं कदमों का सहारा है हुजूर। खुदावंद, बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा हुजूर, कहीं का नहीं रहा।
3: क्या सब ऊख चल गई?
0: सरकार, जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। सारे गांव से बढ़कर ऊख लगी हुई थी सरकार। गरीब परवर, ये गैबी आफत ना पड़ी हुई होती तो हुजूर से उरिन हो जाता।
3: अब क्या सलाह है, देते हो कि नालिशी कर दूं?
0: हुजूर मालिक है, जो चाहे करे। मैं तो इतना ही जानता हूँ, हुजूर के रुपए सर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती हुजूर। दो बार वायदे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वायदा नहीं करूंगा हुजूर, अब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह होगा आपके रुपए भरूंगा हुजूर, आपके रुपए भरूंगा।
3: तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी आरजू कौन सी है?
0: यही हुजूर, कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूं हुजूर, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है हुजूर।
3: उठो रहमान, समझ लो मेरे रुपए अदा हो गए।
0: अरे हुजूर, ये कैसे समझ लो, यहां ना दूंगा तो वहां देने पड़ेंगे हुजूर।
3: नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था।
0: सरकार?
3: हाँ रहमान, हाँ।
0: नहीं नहीं सरकार, नहीं, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मरूंगा हुजूर।
3: कैसा बोझ? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ भी आता नहीं, और कुछ आता भी था तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे एक पैसे की भी देनदार नहीं हो।
0: पर हुजूर, मैंने तो आपसे रुपया कर्ज के तौर पर लिया था हुजूर।
3: नहीं रहमान, असल में तुमसे कर्ज मैंने लिया था, वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरी कर्जदार नहीं हो।
0: नहीं हुजूर, नहीं।
3: तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वो मेरी धर्म पर एहसान था।
0: हुजूर,
3: मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए।
0: सरकार।
3: और रहमान, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती के काम आएंगे।
0: हुजूर, को इस नेकी का बदला खुदा देगा, मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा।
3: नहीं रहमान, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो।
0: नहीं हुजूर, गुलाम।
3: गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके हो रहमान, अब भूल कर भी ये लफ्ज मुंह से न निकालना मेरे दोस्त।
0: सरकार, खुदा आपको सलामत रखे हुजूर, खुदा आपको सलामत रखे।

कीमती धन। अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतर श्री बी एस भटनागर ने किया था। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री बाकर मुज्तबा, राजेंद्र वर्मा, रईस मिर्जा, एच के वैश्य, एल एन भारद्वाज, आर एच चिश्ती, कारी मोहम्मद इलियास, मुमताज मिर्जा, जया मेहता और ललिता शंकर।

अभी आप सुन रहे थे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय सभा, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसमें आप सुनेंगे राग मारू बिहाग। इसे प्रस्तुत कर रही हैं रहना चक्रवर्ती।
1: नमस्कार, मैं रहना चक्रवर्ती। ये शाम का राग है, राग मारू बिहाग आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूं।

और अब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है राग दरबारी कन्नड़ा शेख फरहान अमीन के जरिए।

अभी आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुना राग दरबारी कन्नड़ा शेख फहीम अमीन के जरिए। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल

के लगातार हमलों के कारण हॉर्मूज जल डमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।